आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: क्या नो दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये तो सारा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं मैं या तो हम भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर माटी दी महक। श्रोताओं कर देना अजय दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत के कहने वहाँ सारे यहीं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी में।

शाला कने श्रोताओ तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्म शाला ने गूंज।

रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ, इस वक्त तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी। श्रोताओ ता बढ़ते ना कार्यक्रम च अगे कने सुनने ना कार्यक्रम दा अगला गीत। तुहां सारे इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

0: जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
1: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
2: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
3: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
2: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
0: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
4: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
3: बहू, ठीक किया है तूने।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हेलो, गेस्ट पहुंच रहे हैं, अकेले कैसे संभालूंगी मैं? थोड़ी तेज गाड़ी चला लो, जल्दी आओ।
3: क्या चाहती हैं? कि वो गाड़ी बढ़ा दे, ठोक दे? क्या बताया था मैंने आपको?
2: सॉरी सर।
3: सॉरी नहीं, फोन उठाइए।
2: सुनो, जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ।
3: जल्दी मत मचाओ, आराम से। सड़क दुर्घटना में जान मत गवाओ, जीवन है अनमोल, सबको बताओ।
4: सुबह सुबह माँ बेटी चल दी है स्कूल।
5: नमस्ते भाभी जी।
4: नमस्ते। अरे, इसे भी लड्डू खाना पसंद है।
5: बहुत।
4: बिल्कुल अपनी माँ पे गई है।
6: मैं अपनी माँ जैसे नहीं बनूंगी।
7: अजीब लगा ना सुनकर, पर मुझे माँ जैसा नहीं बनना।
6: माँ जब मेरी उम्र की थी तब से उनके हाथ में बेलन है और मेरे हाथ में कलम है। माँ छोटी सी थी तब सबसे छुपाकर उनकी शादी करा दी, पर आज वो मुझे गर्व से स्कूल लेकर जाती है।
4: वो मैंने ही सिखाया, माँ जैसी बिल्कुल मत बनना। जब मैं इसकी उम्र की थी मैं अपनी गुड़िया के कपड़े बुनती थी, और मेरी गुड़िया अपने सपने बुनती है।
8: ए गुड़िया, मन लगाकर पढ़ाई करना।
4: चले
8: गुड़िया।

0: मेरे मित्र, जीवन में कुछ पल बिगड़ जाने से पूरा जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता। और यदि आप किसी बात को मन में पकड़ कर रख लोगे तो जीवन में सब तबाह होने लगेगा, क्योंकि एक वक्त आता है जब लगता है कि क्या ही शिकायत की जाए किसी से। सब अपनी जगह सही तो होते हैं, लेकिन लोग अच्छे केवल अच्छे वक्त में ही होते हैं।
1: जी, बेटा इस राइड पे बैठा है क्या?
2: हाँ भाई।

0: किसी और को नहीं, अपनी नानी को तो बताएगा ना।
1: इन्हें कितनी बार बताया नानी, मेरी बात सुनते ही नहीं, कि अगर गीला कचरा और सूखा कचरा एक साथ फेंकेंगे तो मेरा फ्यूचर भी तो कचरे में जाएगा।
2: सारा दिन फोन चला के पढ़ाई नहीं कर सकती?
3: पढ़ाई करके क्या करूंगी?
2: नौकरी मिलेगी।
3: नौकरी का क्या करूंगी?
2: पैसा आएगा।
3: पैसे का क्या करूंगी?
2: घर में नौकर जाकर काम करेंगे।
3: जब नौकर जाकर काम करेंगे तो मैं क्या करूंगी?
2: तू आराम से बैठ के फोन चलाइयो।
3: फोन ही नहीं चला रही हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो शोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। टोल दरों में 8% की बढ़ोतरी, टायर डीजल व यूरिया सबके दाम बढ़े लेकिन भाड़ा नहीं, ट्रांसपोर्टरों ने बताया बड़ा स्कैम। जन केंद्रित योजनाओं को लागू करने में न हो देरी, आपत्ति के बावजूद हिमाचल सरकार 1 जुलाई से की बीबी जी रामजी योजना की शुरुआत। नगर निकायों को 1 अगस्त से उपयोग पोर्टल पर ऑनलाइन करनी होगी वित्तीय लेन देन की व्यवस्था। बिना पंजीकरण के चल रहे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर कसेगा सिकंजा। जेई की तरह 2 चरणों में हो सकता है नीट यूजी। अब समाचार विस्तार से। धर्मशाला विद्युत उपमंडल नंबर 1 के सहायक अभियंता अभिषेक कटोच ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 जुलाई सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस लाइन, सिविल बाजार, समृद्धि भवन, जेल कॉम्प्लेक्स, पुलिस ग्राउंड और आसपास के क्षेत्रों में कंडक्टर को केबल में बदलने के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर शटडाउन अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। पोलर निर्माण कार्य के चलते पहली ही बारिश में शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत सिहुबा क्षेत्र के कई घरों में पानी घुसने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने उपमंडल अधिकारी गणेश ठाकुर सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर प्रभावित क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी तथा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। देश भर में टोल टैक्स की दरों में की गई मनमानी बढ़ोतरी ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है। माल ढुलाई के भाड़े में नामात्र की बढ़ोतरी और टोल टैक्स में 6-14% की वृद्धि की भारी बढ़ोतरी ने ट्रक ऑपरेटरों की आर्थिक स्थिति को चरमरा कर रख दिया है। ऑपरेटरों ने इसे एक बड़ा स्कैम करार देते हुए केंद्र सरकार और NHAI की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ट्रक ऑपरेटरों के अनुसार ये केवल टोल का मामला नहीं है बल्कि चौतरफा महंगाई ने उनका काम करना मुश्किल कर दिया है। जानकारी के अनुसार टोल टैक्स की दरें माल भाड़े के अनुरूप 6% से बढ़ाकर 14% करने से 8% हुई बढ़ोतरी की गई है। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा BGT की तर्ज पर टोल बैरियर स्थापित आवंटित करके मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवातीत में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक हाई लेवल बैठक की। बैठक में 2 मुख्य विषयों पर बातचीत की गई। पहला विषय था इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इज ऑफ लिविंग के लिए नियमों में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री ने सचिवों को सलाह दी कि सरकारी कार्यों, खासतौर पर जन केंद्रित योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, किसी भी तरह की ढिलाई या देरी ना हो। बातचीत के दौरान सचिवों ने इन 2 मुख्य विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे अहम कदमों के बारे में बताया। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से पुरानी मनरेगा व्यवस्था की जगह केंद्र सरकार की नई विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी BBJ रामजी योजना लागू हुई। केंद्र के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य सरकार ने योजना का मसौदा तैयार कर लिया है। हालांकि इसके कई नए नियमों को लेकर राज्य सरकार ने कड़ी आपत्ति भी दर्ज करवाई है। नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए सालाना गारंटीकृत रोजगार को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। कार्यों की स्वीकृति से लेकर मजदूरों की उपस्थिति तक की पूरी प्रक्रिया केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर और डिजिटल माध्यम से होगी। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों का सारा रिकॉर्ड उपयोग पोर्टल में ऑनलाइन करने के आदेश जारी किए हैं। पोर्टल पर शहरी निकायों की वित्तीय व्यवस्था से लेकर सभी तरह के कार्य प्रणाली और लोगों के मिलने वाली सभी सेवाओं को भी पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। इसे लेकर शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। ये व्यवस्था प्रदेश में 1 अगस्त से लागू होगी।
इसका उद्देश्य नगर निकाय में वित्तीय कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और डिजिटल बनाना है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार और मंत्रियों के खिलाफ कथित दुष्प्रचार पर सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को शिमला में हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा की गई। सरकार का मानना है कि कुछ लोग इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल सहित अन्य माध्यमों पर एजेंडे के तहत सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्मों पर ना तो कोई पंजीकरण है और ना ही किसी का नियंत्रण। कुछ लोग सरकार की नीतियों या गतिविधियों के बारे में भ्रामक या गलत जानकारी फैलाने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला हिमालय क्षेत्र की दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण, रखरखाव और शोध का प्रमुख केंद्र बन सकता है। एडवांस स्टडी ने इसके लिए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार कर संस्कृति मंत्रालय को भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद संस्थान में हिमालय पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए अत्याधुनिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रस्ताव के तहत केंद्र की स्थापना और पांडुलिपियों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए करीब 4 करोड़ रुपए के बजट की मांग की गई है। यदि योजना को मंजूरी मिलती है तो हिमाचल सहित पूरे हिमालय क्षेत्र के ऐतिहासिक और दुर्लभ पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी। हिमाचल सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवाओं को लेकर नई एवं संशोधित नियम जारी करते हुए सभी विभागों के लिए कड़े दिशा निर्देश लागू कर दिए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्सिंग केवल अस्थायी, आवश्यकता आधारित और नियमित भर्ती होने तक की व्यवस्था है। सरकार ने वर्ष 2022 में जारी पुराने निर्देश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार अब कोई भी विभाग वित्त विभाग की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी नई आउटसोर्स सेवा को ना तो नियुक्त कर सकेंगे और ना ही तैनात कर सकेंगे। बिना मंजूरी की गई नियुक्ति को अनधिकृत माना जाएगा और उस पर सक्षम प्राधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे। हिमाचल के हमीरपुर जिले के मेरी में देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला में परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित करेगी। परियोजना से 10 वर्षों की परिचालन अवधि में लगभग 28,800 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने का अनुमान है, जिससे प्रदेश की हरित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
1: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
2: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
3: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
2: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
0: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
4: तैं अपने खाने की चिंता कर,

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा।
6: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा ये लिंक?
6: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।

0: इसका फोटो लो, हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
1: चलो बच्चों, खाना लग गया।
2: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है,
3: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
1: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ भरपूर, इनसे हो जाती है सब बीमारी दूर। हरी सब्जियों के होते फायदे बड़े, विटामिन और मिनरल से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
4: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
5: हाँ बिल्कुल।
4: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
5: पूछो।
4: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
5: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
4: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
5: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
4: बस गेस कर रहा था।
5: हमारे गेस्ट भी
6: कौन है? कहाँ से आते हैं?

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्स पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी आ गई हूँ आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। तो सभी श्रोताओं को पिंकी की ओर से और रेडियो गुंजन की ओर से बहुत ही प्यारी प्यारी सी गुड गुड वाली मॉर्निंग श्रोताओं, और आज के दिन को और भी ज़्यादा खुशनुमा और सुंदर बनाने के लिए हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, आपसे बातचीत करेंगे, साथ ही साथ आपको सुनाएंगे नए पुराने प्यारे प्यारे से फिल्मी गीत, और साथ ही साथ धर्मशाला और आसपास की जानकारियाँ भी आपके साथ साझा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं श्रोताओं धर्मशाला का तापमान इस समय कितना है। 17 डिग्री सेल्सियस तापमान है और 91% वातावरण में जो है वो नमी है। और श्रोताओं मौसम की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि आज जो है वो मौसम का ऑरेंज अलर्ट है और कहां कहां पे ये ऑरेंज अलर्ट है आपको ये भी बता दें। ज़िला कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को पूरे राज्य में मॉनसून की एंट्री जो है वो हो चुकी है और मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में हुई भारी बारिश से मॉनसून समूचे हिमाचल में अब अपनी पैठ बना चुका है। राजधानी शिमला में बीते कल सुबह से दोपहर तक रुक रुक कर बारिश होती रही, जबकि कांगड़ा, मंडी, चंबा, बिलासपुर और अन्य ज़िलों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। दूसरी ओर लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, सड़क अवरोध और कई तरह की जो रोज़मर्रा की गतिविधियां हैं वो बाधित रही। और फिर से बता दें श्रोताओं आपको एक बार, मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज यानी 2 जुलाई के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। तो श्रोताओं इस वक्त अगर आपको लग रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, ठीक ठाक है, तो दिन भर में आपने अपनी कुछ ना कुछ गतिविधियां करनी होंगी, कहीं बाहर निकलना होगा, तो इस अलर्ट को ध्यान में रखते हुए ही निकलें, सावधानी पूर्वक यात्राएं करें और सावधानी पूर्वक जो है वो सकुशल घर वापस लौटें, हम भी यही चाहते हैं। श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ, और अब कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत।

श्रोतों 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब समय है आपके साथ आज का विचार साझा करने का, तो आइए सुनते हैं आज का विचार। हमारे जो रिश्ते हैं उनकी डोर कहते हैं कच्चे धागे से बंधी होती है, और जरा सा भी उसमें झटका लगता है तो वो कच्चा धागा जो है वो टूट जाता है, और टूटने के बाद अगर गांठ पड़ जाए तो रिश्तों में जो है वो वाला आनंद वो वाला मज़ा नहीं आता। इसलिए आपके जो रिश्ते हैं जो कच्चे धागे की डोर से बंधे हुए रिश्ते हैं उनमें इतना खिंचाव और तनाव कभी मत आने दीजिए कि वो टूटें और उनमें गांठ पड़ जाए। जी हाँ श्रोताओं, हमारे जो रिश्ते होते हैं चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हैं, दोस्ती के हैं या समाज में हमारे रिश्ते हैं, अगर उनको हम प्यार से बना करके चलते हैं यानी उनमें कोई किसी प्रकार का खिंचाव और तनाव नहीं आने देते तो स्मूथली वो रिश्ते ज़िंदगी भर अच्छे से चलते हैं। और जब भी कभी मनमुटाव की स्थिति आती है या खिंचाव तनाव आता है तो वो रिश्ते जो हैं वो कच्चे धागे की डोर की तरह से टूट जाते हैं, और फिर जब गांठ लगती है तो फिर गांठ पड़ी हुई कोई भी चीज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके जो रिश्ते हैं जितने भी रिश्ते हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते भी बनाने मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं होती, जितने भी थोड़े या ज़्यादा रिश्ते हैं उनको आप प्यार से निभाइए और उनमें कभी गांठ मत आने दीजिए। यही था हमारा आज का विचार श्रोताओं 91.2 MHz पर, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में आज का विचार तो आपको सुना दिया, और अब सुनाते हैं कार्यक्रम में आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला आपकी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद यानी 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला जारी रहेगा प्रादेशिक समाचारों के बाद भी, यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार की सब कमेटी ने CBSE संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट के आधार पर नियुक्तियां करने की सिफारिश की। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमत 183.50 रुपए घटाई। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन ने बदली धर्मशाला की तस्वीर। मॉनसून के दौरान शिमला में 3 महीने तैनात रहेगी NDRF की टीम। और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय, राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार की कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य के 158 CBSE संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की सिफारिश की है। कैबिनेट सब कमेटी की उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई बैठक में ये सिफारिशें की गई। अब इस सिफारिश पर मुख्यमंत्री अंतिम फैसला लेंगे। इन स्कूलों में तैनाती के लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई चयन परीक्षा में 6,084 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि इन स्कूलों में लगभग 6,200 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। प्रदेश सरकार द्वारा खोले जा रहे इन CBSE संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के कारण अभी तक लगभग 500 विद्यार्थी इन स्कूलों को छोड़ चुके हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बाद तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपए की कमी की है। तेल कंपनियों ने विमान ईंधन की दरों में भी 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। जानकारी के अनुसार अब 19 किलो वाला वाणिज्यिक सिलेंडर 2,930 रुपए में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बीते 4 महीनों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना ने पर्यटन नगरी धर्मशाला को नया रंग रूप दे दिया है। बीते 5 सालों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धर्मशाला में जहां लोगों को मेट्रो शहरों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुई है, वहीं धर्मशाला शहर विकास के मॉडल के रूप में भी उभरा है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना ने 5 वर्षों में धर्मशाला की तस्वीर बदल दी है। शहर में प्रस्तावित 80 विकास परियोजनाओं में अधिकांश पूरी हो चुकी हैं, जबकि स्मार्ट रोड, क्लब हाउस के साथ फुटबॉल ग्राउंड और ISBT के पास पार्किंग जैसी कुछ परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के CEO जफर इकबाल ने बताया कि धर्मशाला को राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल के रूप में पहचान मिली है। नड्डी और गमरू में रूट जोन ट्रीटमेंट प्लांट तथा 15 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और ई मोबिलिटी को भी बढ़ावा दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए गए इन कार्यों ने धर्मशाला को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और नागरिक सुविधाओं से समृद्ध शहर के रूप में स्थापित किया है। आने वाले समय में शेष परियोजनाओं के पूरा होने के साथ धर्मशाला स्मार्ट और सतत शहरी विकास का एक और मजबूत उदाहरण बनकर उभरेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: शिमला जिले में मॉनसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं और आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने NDRF की एक टीम को शिमला में तैनात किया है। ये टीम 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 महीने की अवधि के लिए शिमला के ढली में तैनात रहेगी। इस टीम में 30 सदस्य शामिल है। शिमला की अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ज्योति राणा ने कहा कि जिला प्रशासन मॉनसून के दौरान किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। शिमला जिला भाजपा अध्यक्ष केशव चौहान ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता व कार्यकर्ता भाजपा के संपर्क में है और पार्टी में शामिल होने के इच्छुक है। केशव चौहान ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और पंचायत चुनाव के नतीजे इसका स्पष्ट प्रमाण है। यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें पार्टी ने कहा

0: समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रदेश में लगातार सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा हुई। इस दौरान मंडी जिला के ओट के पास पहाड़ से गिरी एक चट्टान की चपेट में आने से एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। प्रदेश में मानसून से जुड़ी घटनाओं में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज चंबा जिले के पांगी और लाहौल घाटी में 2 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं भी हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। इधर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जिले में ग्लेशियरों के पिघलने से बाढ़ आने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए लोगों को सचेत रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। इधर लोक निर्माण विभाग ने मानसून को देखते हुए विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। चंबा जिला उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर प्रमोद शाह ने जिले के सभी बागवानों से सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बदलते मौसम के कारण ओलावृष्टि, भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बागवानी को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए मौसम आधारित फसल बीमा एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। डॉक्टर प्रमोद शाह ने कहा कि बागवान इस योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवा कर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। यदि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है तो बीमित बागवानों को योजना के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाता है।
1: हम लोग की तो यही सलाह देती है मैं फार्मर को कि अपना जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसको टाइमली उसको आप जरूर अवेल करें, क्योंकि मौसम का कभी भी हम अनुमान नहीं लगा सकते कि अनुमान कब इसका बदलाव आ जाए।
0: हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत बलोह की सरपंच लता देवी का इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित महिला राजनीतिक नेतृत्व कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। इस राष्ट्रीय नेतृत्व कार्यक्रम के तहत लता देवी को भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का मौका मिला। लता देवी ने कहा कि एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सरपंच के रूप में लोकतंत्र के सर्वोच्च विधायी मंच को निकट से देखने और उसकी कार्यप्रणाली को समझने का ये अवसर उनके सार्वजनिक जीवन का अत्यंत प्रेरणादायी और गौरवपूर्ण क्षण रहा। प्रदेश व्यापी एंटी चिट्टा अभियान के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स और जिला पुलिस व औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में दवा विक्रेता, मेडिकल की दुकानें, औषधि थोक विक्रेता और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का सघन निरीक्षण किया गया। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, लाहौल चंबा में 3 जगह बादल फटे, सड़कें ध्वस्त, मंडी में पत्थर लगने से महिला की मौत। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अंततः पूरे प्रदेश में पहुंचा मानसून, लाहौल स्पीति के जामलना में, चंबा के साहो में बादल फटने से नुकसान। पंजाब केसरी लिखता है, सिरमौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा में आज भारी वर्षा की चेतावनी। शिमला में 50 लाख के जेवर चोरी मामले में पंजाब से 2 महिलाएं गिरफ्तार, 40 तोला सोना भी बरामद। शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, शिमला पुलिस को सीसीटीवी और तकनीकी जांच से मिला आरोपियों का सुराग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार की सब कमेटी ने सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट के आधार पर नियुक्तियां कराने की सिफारिश की। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 183.50 रुपए घटाई। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन ने बदली धर्मशाला की तस्वीर। मॉनसून के दौरान शिमला में 3 महीने तैनात रहेगी एनडीआरएफ की टीम। और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय, आज राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप

तो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं और सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में। श्रोताओं, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी इस समय आपके साथ बनी हुई हूँ रेडियो गुंजन के माध्यम से। और बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश के 4 ज़िलों में आज ऑरेंज अलर्ट जो है वो बताया गया है, और इसीलिए आप सभी श्रोताओं से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी श्रोताओं कि जब भी घर से बाहर निकलें ध्यान पूर्वक निकलें। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम, खासकर बरसात का मौसम जब आता है तो अपने साथ बहुत सी धार्मिक यात्राएं भी बरसात के मौसम में, खासकर हिमाचल प्रदेश में लोगों की मान्यताओं के हिसाब से धार्मिक यात्राएं भी होती हैं और हम उन यात्राओं पे भी निकलते हैं। लेकिन वहीं इस बरसात के मौसम में जाने अनजाने बहुत सी घटनाएं और दुर्घटनाएं भी होती हैं, और कहते हैं कि दुर्घटनाएं कभी किसी को कह कर के नहीं आती। इसलिए जब भी घर से बाहर निकलें मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी को पूरा ध्यान में रखते हुए निकलें, और जब मौसम ठीक ठाक हो, यात्राओं में निकलने के लायक आपको लगे कि मौसम जो है वो जाने लायक है, तभी घर से आप बाहर निकलें। श्रोताओं, आपके साथ बातचीत का भी आनंद उठाएंगे, साथ ही साथ जानकारियां भी साझा करेंगे और प्यारे प्यारे से गीत भी आपको कार्यक्रम में सुनवाएंगे। तो आइए अब लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की दुनिया में और सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। श्रोताओं, गीत है चमेली फिल्म से और गीत को गाया है सुनिधि चौहान ने। आइए इंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे आपको सुनवा रहे हैं गदर 2 फिल्म से बहुत ही प्यारा सा गीत, और गीत के बोल हैं चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये गीत जो है श्रोताओं बहुत ही प्यारा है और आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन अभी आपको फिर से सुनवाएंगे। और इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये ज़िंदगी की वो हम कह सकते हैं एहसास हैं या वो ज़रूरतें हैं जो हमें ज़िंदगी में बहुत चाहिए होती हैं। जब इंसान प्यार में होता है, इश्क में होता है, तो ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत और हसीन लगती है। वहीं अगर ज़िंदगी में प्यार नहीं होता तो ज़िंदगी नीरस और उदास लगती है। प्यार ज़रूरी नहीं कि आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका से प्यार हो, प्यार ज़िंदगी में आपको किसी से भी हो सकता है। हमें अपने माता पिता से प्यार होता है, अपने काम से प्यार होता है, ज़िंदगी में हमें कुछ करना होता है, कुछ करने की ज़ील जो होती है हमारे अंदर, वो भी एक तरह का प्यार होता है। और ये जो प्यार है श्रोताओं, ये अगर हमारे अंदर रहता है, हम इस प्यार को महसूस करते हैं, तो ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत लगती है। और हम यही चाहते हैं श्रोताओं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहद खूबसूरत बनी रहे, और साथ ही साथ आपके साथ रेडियो गुंजन का साथ है तो क्या ही बात है। तो आइए श्रोताओं, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत गदर 2 फिल्म से।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है आपके साथ आज के दिन के इतिहास को जानने का। आइए जानते हैं क्या कुछ खास घटा था आज के दिन इतिहास में।

श्रोताओ, 2 जुलाई 1940 ब्रिटिश सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आज ही के दिन 1962 अमेरिका के अरकासम में पहला वॉलमार्ट स्टोर आम जनता के लिए खुला था। और श्रोताओ, आज ही के दिन यानी 2 जुलाई 1972 भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐतिहासिक शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जुलाई 1983 भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन की पहली इकाई कल्पक्काम मद्रास में चालू हुई थी। तो ये थी कुछ खास घटनाएं जो आज के दिन इतिहास में घटी थी। 91.2 MHz पर आपने समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में चलते हैं मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत।

1491 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब रुख करते हैं जानकारियों की ओर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही नशे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए नशे के विरुद्ध सामूहिक रूप से मिशन मोड में अभियान चलाने का आह्वान किया। वे लोक भवन में अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा आयोजित एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई ए स्टेप टूवर्ड्स ड्रग फ्री हिमाचल अभियान के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सोसाइटी के राज्यव्यापी नशा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसे आगामी दिनों में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों तक पहुंचाया जाएगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और आप लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में हम बातचीत का भी मज़ा ले रहे हैं और साथ ही साथ प्यारे प्यारे से गीत भी सुन रहे हैं। और श्रोताओ, कार्यक्रम के शुरू में हमने बात की थी कि रिश्तों के जो ताने बाने हैं उनको संभालना और संजो के रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ श्रोताओं, हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे रिश्तों से खूबसूरत बनती है, और रिश्तों से खूबसूरत तब बनती है जब हमारे जो रिश्ते हैं वो भी खूबसूरत हों। और वो कैसे खूबसूरत होते हैं, उनमें हमें अपना समय और अपना जो है केयर देनी पड़ती है। जिस तरह से हमारे घर में छोटे छोटे पौधे जिनको गार्डनिंग का शौक़ होता है वो पौधों की देखरेख करते हैं, उनके सूखे पत्ते को निकालना, उन्हें समय समय पर पानी देना और हवा में रखना, और जब वो प्लांट वो पौधे हरे भरे होते हैं, खिलखिलाते हैं, तो हमें भी खुशी होती है और वो पौधा भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है, खिल रहा होता है। हमारा जो एहसास उन पौधों को होता है, और हमारे जो रिश्ते हैं वो भी वैसे ही हैं। श्रोताओं, अगर हम अपने रिश्तों को समय, केयर और अटेंशन नहीं देंगे तो उन्हीं पौधों की तरह वो जो रिश्ते हैं वो भी मुरझा जाएंगे, और एक बार मुरझाने के बाद फिर जिस तरह से पौधे नहीं पनपते हैं, नहीं खिलते हैं, उसी तरह से कई बार हमारे रिश्ते भी अगर एक बार मुरझा जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो फिर लाख कोशिशें हम कर लें वो रिश्ते जो हैं वो नहीं उस तरह से बन पाते। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी हमारे रिश्ते हैं, पारिवारिक हैं, दोस्ती के हैं, जो भी हैं, उनमें हम अपना समय, प्यार और सम्मान देते रहें, ताकि ताउम्र ये रिश्ते जो हैं वो खूबसूरत बने रहें और खूबसूरती के साथ हम इन रिश्तों को निभाते रहें। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला एंजॉय कर रहे हैं आप। और अब लीजिए आनंद उठाइए कार्यक्रम में, कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।
1: सारेगामा कर

102 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे श्रोताओं जोधा अकबर फिल्म का गीत। सोनू निगम और मधुश्री की आवाज़ में

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और एक ज़रूरी सूचना, धर्मशाला विद्युत उपमंडल नंबर 1 के सहायक अभियंता अभिषेक कटोच ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 जुलाई यानी आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस लाइन, सिविल बाज़ार, समृद्धि भवन, जेल कॉम्प्लेक्स, पुलिस ग्राउंड और आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी और मौसम खराब होने पर ये कार्य जो है वो अगले दिन किया जा सकता है, और उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। श्रोताओं, ये थी जानकारी। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब आनंद उठाइए श्रोताओं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में फिर से रुख करते हैं जानकारियों की ओर। फोर लेन निर्माण कार्य के चलते पहली ही बारिश में शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत सेमवा क्षेत्र के कई घरों में पानी घुसने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने उपमंडल अधिकारी गणेश ठाकुर सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर प्रभावित क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएँ सुनी तथा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बरसात के मौसम को देखते हुए स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। श्रोताओं, ये थी जानकारी। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में आगे सुनवा रहे हैं श्रोताओं आपको ताल फिल्म का गीत। जी हां, ताल फिल्म का नाम सुनते ही हमारे जहन में वो सुने सुनाए गीत आते हैं जो हमने अक्सर सुने होते हैं, लेकिन आज आपको थोड़ा अलग सा गीत सुनवा रही हूँ श्रोताओं। सुना तो आपने ये भी होगा, लेकिन इस गीत को बाकी गीतों की तुलना में कम सुना जाता है। हरिहरन की बहुत ही प्यारी सी मीठी सी आवाज़, और हरिहरन की आवाज़ सीधा दिल तक, या यूं कहें कि सीधा रूह तक जाती है। तो आइए श्रोताओं, रहस्य को ज़्यादा समय तक नहीं रखते और सुनवाते हैं आपको ताल फिल्म का ये प्यारा सा गीत, ए हरिहरन की आवाज़ में नहीं सामने।
1: Tips Official

श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में बातचीत का आनंद भी ले रहे हैं हम और साथ ही साथ प्यारे प्यारे जो गीत हैं उनका भी आनंद ले रहे हैं। तो लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत।

शुद्ध 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में बातचीत के साथ गीत संगीत का भी आनंद लिया जा रहा है और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत तनु वेड्स मनु फिल्म से। ये गीत हमने लिया है श्रोताओं, इंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और बने रहिए यूं ही हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

शुद्ध 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आप मेरे रेडियो दोस्त पिंक

के साथ। और श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से बरसात के मौसम में जो है वो दुर्घटनाएं होती हैं। और थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि बीते दिनों कुछ दिन ही पहले की ये घटना है कि धर्मशाला के ही नरगोटा गांव में ना तो वो गाड़ी चल रही थी, ना तो ओवर स्पीड थी, खड़ी हुई गाड़ी किस तरह से समय पर मुरम्मत ना होने की वजह से जो मार्ग था, जो सड़क थी, उससे वो लुढ़क कर नीचे जा गिरी। और एक युवक जिसकी उसी समय मृत्यु हो गई, और उसके साथ जो युवती बैठी हुई थी उसको भी जो है वो गंभीर चोटें आई हुई हैं। और दुख का माहौल है, गमगीन माहौल था धर्मशाला में काफ़ी समय तक। और जिनका जवान बेटा जाता है उनको पता चलता है कि किस तरह से ज़िंदगी जो है वो पूरी बिखर जाती है। और उनका गया हुआ बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम आप सबसे अपील करते हैं कि बरसात के मौसम में खासकर घरों से अगर आप निकलें तो जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, उनका भली भांति आप निरीक्षण कर लें, या पहले से किसी से जान लें, पूछ लें कि वो रास्ते ठीक हैं या नहीं। और कहते हैं दुर्घटनाएं किसी को कहकर नहीं आती, ना तो ओवर स्पीड की वजह से उस बच्चे की जान गई, और ना ही जो है वो किसी भी तरह की हार्श ड्राइविंग करते हुए। तो दुख है इस बात का। और इस तरह से एक ही नहीं, बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें हम सरकार को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी या जो भी विभाग इस तरह से जो संबंधित विभाग होते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे हमारी कमी रह गई है। तो समय रहते अगर उन सड़कों का निर्माण कर लिया जाए तो अच्छी बात है। और दूसरी बात करें, अगर हम धर्मशाला, जिसे पर्यटन नगरी कहा जाता है, और लाखों की संख्या में यहाँ पे जो है वो हर साल पर्यटक आते हैं, और चाहे गर्मियों का मौसम हो, चाहे सर्दियों का मौसम हो, सर्दियों में बर्फ़ देखने के एक्साइटमेंट की वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, और गर्मियों में गर्मी से राहत पाने के लिए आते हैं। शुक्रगुजार हैं हम लोग कि हम धर्मशाला में रहते हैं। वहीं जब इतने सारे टूरिस्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की ज़िंदगी जो है वो खस्ता हाल होती है। उन्हें घर से निकलने में, खासकर बात करें मैक्लोडगंज भागसूनाग साइड की, और वहाँ से अगर गर्मियों के दिनों में किसी को आना पड़े धर्मशाला तक, तो एक तो पूरा दिन लग जाता है, ऊपर से आने वाले आएंगे लेकिन उस तरह की व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाते हैं, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो पार्किंग है, और उसकी वजह से इतना बुरा हाल होता है। जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी लगता है कि हम यहाँ आकर के शहर के जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है उससे आराम के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन शहरों में आकर के भी उनकी रफ्तार जो है वो रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे श्रोताओं कि समय रहते हर किसी को अवेयर हो जाना चाहिए, चाहे वो सरकार है, चाहे वो स्थानीय लोग हैं, और बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं हमारे, उनको भी थोड़ा सा इस तरह का संदेश जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा संख्या में अगर वो आएंगे तो उनको भी परेशानी होगी, और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी, उनको ठहराने में भी परेशानी होगी। साथ ही जिस तरह से मैंने आंखों देखा हाल, अगर मुझे ही मैक्लोडगंज या भागसूनाग से पैदल पैदल या फिर जैसे भी वहाँ किसी गाड़ी में भी आना पड़े, फिर भी बहुत दिक्कत और बहुत मुश्किल होती है। तो बरसात के मौसम में, खासकर इन दिनों जब ट्रैवल करें, तो अच्छे से जो है जो हमारे मार्ग हैं उनका निरीक्षण कर लें, या पहले से पता कर लें कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो ठीक ठाक है। और मेरी एक ही बात में दो तीन बातें आ गई हैं कि एक्सेस जब हो जाता है गाड़ियों का, खासकर पर्यटक पर्यटक जो आते हैं हमारे, और स्थानीय जो लोग हैं उनको भी थोड़ा हौच पौच इस तरह की ज़िंदगी का सामना करना पड़ता है। तो इन सब बातों को समझ लीजिएगा, समय कम है मेरे पास, विस्तार से समझाएंगे किसी और दिन। फिलहाल यही कहेंगे कि जब भी आप घर से निकलें, दोपहिया वाहन पर निकलें, तो हेलमेट का ज़रूर आप इस्तेमाल करें, और फ़ोन को अवॉइड करें ड्राइविंग के दौरान। और अगर गाड़ी में निकल रहे हैं तो सावधानी पूर्वक निकलें। और श्रोताओं, इस वक्त आपको बता दें, आप है रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और लीजिए अब आनंद उठाइए श्रोताओं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोताओ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी अब ले रही हूँ आपसे विदा इसी वादे के साथ कि बहुत जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो।

0: क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
1: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
2: हेलो
3: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
2: हाँ बोलिए।
3: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
2: 10 लाख? सच्ची?
3: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
2: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
3: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
2: ओके।
3: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
2: अच्छा
3: सर, मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
2: अच्छा, ये ले।
3: यस सर।
4: मछली तो फंस गई। शिंगे
5: देखो,
4: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
6: चलो बच्चों, खाना लग गया।
7: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
8: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
6: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों,

0: अरे 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

सुहाने। आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा
6: सर, मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा, ये लिंक?
6: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ

0: छह वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? ये लोग कहाँ से आते हैं?

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गेन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गेन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही यंग डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। इनका नाम अभिषेक है और ये भोपाल के रहने वाले हैं। दोस्तों, इनकी खास बात बताऊं कि इन्होंने अपनी मदर की जान बचाने के लिए मदर्स डे के दिन अपने लीवर का आधा हिस्सा डोनेट किया था। तो दोस्तों चलिए हम अभिषेक से बात करते हैं और इनकी कहानी जानते हैं और लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में और लीवर डोनेशन के बारे में इनकी राय जानते हैं। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: जी नमस्ते।
2: अभिषेक जी, जैसा मैंने आपके इंट्रो में बताया कि आप बहुत यंग हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपकी एज कितनी है, आप क्या काम करते हैं, आपने क्या पढ़ाई की है, कहाँ से आप हैं।
3: जी नमस्ते, मैं अभिषेक सक्सेना, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। मैंने मैकेनिकल ब्रांच से 2020 पास आउट हूँ
2: जी।
3: और मैं मतलब मैकेनिकल फील्ड में ही जॉब कर रहा था एज अ क्वालिटी इंस्पेक्शन पे, लेकिन मेरी मदर की तबीयत खराब होने के चक्कर में मुझे वो जॉब छोड़कर आना पड़ा।
2: तो आप किसी और सिटी में जॉब कर रहे थे?
3: जी, मैं इंदौर में पीतमपुर में जॉब कर रहा था।
2: ओके, सो 2020 में आपकी इंजीनियरिंग कम्प्लीट हुई थी, तो आई थिंक आपकी उम्र अभी 20 साल होगी लगभग।
3: मेरी जो है 24 है।
2: ओके, ठीक है। सो अभिषेक, चलिए बात करते हैं लीवर ट्रांसप्लांट की और लीवर डोनेशन की। तो आपने बताया कि आपकी मदर को लीवर की प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को डिटेल में बताएंगे कि कैसे इन सब की शुरुआत थी और लीवर ट्रांसप्लांट तक बात कैसे पहुंची?
3: एक्चुअल में ये हुआ था कि मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था इंदौर में, मैंने अपनी मम्मी से बात की फोन पे। मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है
2: सडनली, आउट ऑफ सडन।
3: तो मैं गांधी जयंती थी उस दिन मैं अपने घर आया था, मैंने देखा मेरी मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है।
2: क्या हो रहा था?
3: उनके पेट में पानी जमा हो रहा था,
2: पेट फूल रहा था,
3: पेट काफी फूल रहा था, पानी बहुत ज्यादा भर रहा था। तो उनका वेट जैसे नॉर्मली हम लोग देखते थे तो उनका वेट जो आता था 68-70 करीब आता था, लेकिन उस टाइम उनका वेट 75 के ऊपर ही था। तो हमें लगा शायद मशीन खराब होगी, फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए ग्लोबल हॉस्पिटल भोपाल में ही बिट्ठल मार्केट के पास
2: जी।
3: तो हम वहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने उनका सोनोग्राफी करने को बोला। सोनोग्राफी कराया तो उनके पेट में पानी नजर आया। तो हमने कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये लीवर सिरोसिस है उनको। मैंने कहा लीवर सिरोसिस के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो फिर उन डॉक्टर ने हमें बोला कि लीवर, जब लीवर की स्टेजेस होती हैं फाइब्रोसिस, राइब्रोसिस, इस टाइप के, ये एक सिरोसिस है, इसके बाद सीधा फेल हो जाता है लीवर। तो हम लोग डर गए, हमने कही कि अब इनको कैसे भी करके ठीक करना है। तो हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला आप इनको ठीक करने के लिए इनके वेट लॉस करने की कोशिश करिए, नमक कम दीजिए और उनका वेट ऑटोमेटिक सही होगा तो लीवर रिकवर करना स्टार्ट होगा
2: जी।
3: बट हमने पूरी कोशिश की, उनको डाइट प्रॉपर फॉलो की। मैं जॉब छोड़ के आ गया, मैंने जॉब के बारे में सोचा भी नहीं है, इससे बोल दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी मम्मी की ऐसी कंडीशन है मैं कंटिन्यू नहीं जॉब नहीं कर सकता। ने कही कि आप छुट्टी ले लीजिए, बट मैंने कहा मैं कितने दिन छुट्टी लूंगा क्योंकि ये बीमारी काफी लंबी चलने वाली थी
2: जी।
3: जैसा हमें डॉक्टर ने बताया था, तो मैंने उनकी डाइट प्रॉपर फॉलो करवाई, उनका वेट अप्रोक्सीमेट 65 तक लेके मैं आ गया था। फिर डॉक्टर ने सडनली उनकी कुछ रिपोर्ट्स देखी जिसके वजह से उन्होंने बोला कि इनकी जो पैरामीटर्स हैं वो बिगड़ रहे हैं। मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे इतने अच्छे से
2: बिल्कुल बिल्कुल कोई
3: मुझे इतने अच्छे से नहीं पता कि पैरामीटर
2: अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये सारी चीजें जो ट्रीटमेंट हुआ, दवाइयां चली, ऊपर नीचे हुआ, वेट कंडीशन सुधरी बिगड़ी, ये सब कितने दिन तक चला?
3: ये 2020 सितंबर से लेके ये 2021 के नवंबर तक ये चला।
2: एंड देन डॉक्टर्स ने फिर लास्ट चीज बोली कि
3: ट्रांसप्लांट ही
2: इससे पहले कभी आपने ट्रांसप्लांट के बारे में सुना था?
3: मैंने सुना था तो डर लगता था क्योंकि मैंने सिरोसिस के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, तो उसमें ऑप्शन तो आता था ट्रांसप्लांट का, लेकिन हम वहाँ ध्यान नहीं देते थे कि ट्रांसप्लांट लास्ट ऑप्शन होता है, बड़ा ऑप्शन होता है
2: जी।
3: कोई भी अपने फैमिली में नहीं चाहता कि इस ऑप्शन तक जाए,
2: जाए
3: सोचते है कि मेडिसिन से ठीक हो रहा है तो हो जाए।
2: बट आपके केस में ये सिचुएशन आ चुकी थी,
3: ये
2: उसके बाद क्या हुआ?
3: ये सिचुएशन ऐसे आई थी जब मतलब मम्मी की एनिवर्सरी थी, 22 नवंबर को उनकी एनिवर्सरी थी, हम लोगों ने एक अच्छा सेलिब्रेशन किया था, उसके जस्ट 6 to 7 डेज के बाद उनका एकदम से अमोनिया हाई हो गया था
2: जी।
3: अमोनिया जब हाई हुआ तो उनको सोचने की वो कॉन्शियसनेस उनकी खत्म हो गई,
2: डिसओरिएंटेड हो गई थी,
3: वो सोच समझ नहीं पा रही थी क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमें नहीं पहचान रही थी
2: जी।
3: मतलब वो कंडीशन ऐसी थी कि वर्स्ट कंडीशन थी हमारे लिए, हमने वो ऐसे अपनी मम्मी को कभी नहीं देखा था कि हमें मम्मी को ऐसा क्या हो गया, उसके उसमें उसको उनको ठीक होने के लिए जो लगता मैं वो करने को रेडी था।
2: जब डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट का बोला तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि
3: डोनेट करना,
2: फाइनली मतलब आपका डिसाइड हुआ कि आप डोनेट करेंगे
3: जी।
2: चलिए चलिए अभिषेक जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और श्रोताओं छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आके अभिषेक से अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप वेट करिए, हम आते हैं एक क्विक ब्रेक के बाद।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जाने कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक में जाने से पहले चर्चा कर रहे थे अभिषेक से, जिन्होंने अपनी मदर को अपने लीवर का आधा हिस्सा डोनेट किया था। सो ब्रेक में जाने से पहले अभिषेक ने बताया कि कैसे प्रॉब्लम डायग्नोज हुई और उसका सॉल्यूशन पता चला है, अभिषेक ने डिसाइड किया। सो अभिषेक, जब आपने डिसाइड किया ये चीज़ तो मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, क्योंकि आप तो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो और नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, तो आपको तो आपके मन में तो और ज़्यादा शंकाएं हुई होंगी कि मैं लीवर डोनेट कैसे करूँगा एंड क्या होगा उसके बाद की लाइफ स्टाइल क्या रहेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं, मम्मी की प्रॉब्लम कैसी रहेगी। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपकी मनोदशा बताइए, क्योंकि ये सब हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये शो सुनेंगे उनके घर में भी हो सकता है किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो और वो भी उस असमंजस में हो, तो उन सभी लोगों को इस चीज़ से हेल्प मिलती है।
2: नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी मतलब लीवर डोनेट करते समय मुझे भी बिल्कुल भी एक बात की मतलब अपने आप को लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लगी थी कि मुझे कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं जो हूँ मैं ठीक रहूँगा, मुझे 110% पता था इस चीज़ का। हाँ, थोड़ा सा मेरे को लोगों ने जरूर मेरे को बोला था कि नहीं तुम ये करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, कि तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बाकी है, अभी तुम ये करोगे तो मैं
1: कौन लोगों ने
2: बहुत रिलेटिव्स दोस्त लोग उस बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं तुम मत करो, तुम्हें जाना है। मतलब मेरे को एक्चुअली में डिफेंस में जाने का मेरा बहुत था। हाँ, डिफेंस में जाने में थोड़ा मुझे जरूर डाउट आया हुआ कि वहाँ नहीं जा सकता, बट मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि दिक्कत होगी तुम्हें, बट मैंने वो सारी बातें इग्नोर करी। मैंने कहा ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। जो मैंने बहुत सारे पॉजिटिव एग्जांपल भी देखे थे, वो मैंने कहा 1% भी अगर चांसेस से ठीक होने का तो मैं 1% पे खड़ा क्यों नहीं होता।
1: बिल्कुल, मैं भी आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इतने क्विक डिसीजन लेते हैं सिचुएशन में। जैसा आपने बताया कि आपने जॉब भी तुरंत छोड़ दी और पूरा फोकस अपनी मदर की हेल्थ पे दिया एंड देन क्विक डिसीजन लिया कि नहीं मैं ही डोनेट करूँगा, अपने बारे में ना सोचते हुए, अपने कैरियर, अपने फ्यूचर, सारी चीज़ें इग्नोर करके। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, मिथ्स जिनके मन में रहते हैं, मिथ्स के चक्कर में पड़ जाते हैं।
3: जी,
1: सो जब इन सब लोगों ने बताया और आपने उन सब चीज़ों की इग्नोर कर दी, सो अब जब ट्रांसप्लांट हो चुका है, अब वो आपको देखते हैं तो आप उनकी जो सोच है उसमें कुछ चेंज आपको नजर आया?
2: हाँ, उन्होंने ये बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा हर हमारे भी बेटा हो तो उनको भी ये काम करना चाहिए, हम चाहते कि हमारे बच्चा भी अगर हो तो हमारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लेना चाहे। ये सब बहुत लोग बोलते हैं और चाहते हैं।
1: और रिलेटिव्स का?
2: सारे रिलेटिव्स बोलते हैं, बट अब जो मतलब मेरा जो एक प्रोस्पेक्टिव था, अगर मेरी मम्मी ही ठीक रहती तो आज मुझे बहुत
1: जी
2: उस चीज से एक वो रहता कि
1: मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि अभिषेक ने अपनी मदर को लीवर डोनेट किया था, लेकिन बाय चांस कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से अभी मदर इस दुनिया में नहीं है, वो एक्सपायर हो गई हैं, लेकिन अभिषेक अभी बिल्कुल ठीक है। अभिषेक, अच्छा आप श्रोताओं को ये बताइए कि जब आपने लीवर डोनेट किया तो पेपर वर्क क्या रहा और कितना टाइम इन सब चीज़ों में लगा?
2: पेपर वर्क
1: क्या क्या दिक्कतें अगर कुछ आई हो तो वो भी बता सकते हैं आप, उनका हल भी बता सकते हैं। और
2: पेपर वर्क में हमें काफ़ी टाइम लगा था।
1: क्या मतलब क्या किस तरीके का
2: पेपर वर्क कैसा था? पहले इनसे परमिशन लेना, ये GMC से गवर्नमेंट परमिशन लेना, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना, अपने आप को प्रूफ करना कि मैं इनका बेटा हूँ, हर चीज़ के सारे डॉक्यूमेंट में नाम सब चीज़ें, और मम्मी रेलवे एम्प्लॉय थी तो वो रेलवे से एफिलेटेड मतलब उनसे टाई अप था, जिस मतलब ऑपरेशन होना था रेलवे के थ्रू ही उनका ऑपरेशन होता, तो रेलवे की को भी परमिशन दिलवाना हायर अथॉरिटी से, जो रेलवे के जो हायर अथॉरिटी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ से भी उनको मतलब लिखवा के लाना कि हाँ इनको लीवर ट्रांसप्लांट नीडेड है, तब जाके ही मतलब ऑपरेशन आगे प्रोसेस होता। पहले रेलवे के परमिशन करवाया, फिर GMC जो मतलब मध्य प्रदेश का जो गवर्नमेंटल हॉस्पिटल है हेड, उधर से परमिशन दिलवाया, पुलिस की वेरिफिकेशन कराई, फिर बंसल हॉस्पिटल्स के सारे जो कमेटी बैठी उनकी परमिशन दिलवाई, सबकी परमिशन के बाद करते करते कम से कम 4 से 5 महीने लग गए थे
1: इन सब चीजों में।
2: अगर कोई मतलब ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगना चाहिए।
1: और अगर हम खर्चे की बात करें तो करीब कितना खर्चा इस
2: खर्चा अप्रोक्सीमेट 42 to 50 लाख जाता है कम से कम
1: गया आपका
2: ऑपरेशन ही। ऑपरेशन का जो है वो 22 लाख का 20 लाख का ऑपरेशन होता है।
1: केस टू केस डिपेंड करता है खर्चा। आपको करीब 40 लाख 45 लाख तक पड़ा
2: पड़ा क्योंकि ऑपरेशन के पहले जो खर्चा हुआ वो कम से कम 7 से 8 लाख या 10 लाख जाता है और ऑपरेशन जो होता है वो 20 लाख 22 लाख।
1: ये सारे फंड्स आपने खुद ने अरेंज किए?
2: नहीं, हमें अरेंज हमारे मतलब रेलवे से टाई अप था तो रेलवे ने काफी इसमें ऑपरेशन में 14 लाख की मदद की थी
1: रेलवे की तरफ से क्योंकि आपकी मदर रेलवे एम्प्लॉय थी। ओके
2: जी, बाकी पूरा हमारा ही उसमें अरेंज रहता है
1: जी। सो अगर हम थोड़ी सी मदर की बात करें तो ट्रांसप्लांट हो गया था उसके कितने दिन बाद ये चीज़ हुई?
2: ट्रांसप्लांट हो गया था, मैं जो डिस्चार्ज हुआ था वो 1 वीक के बाद में डिस्चार्ज हो गया था। 1 to 10 डेज 7

0: उनका एडमिट कर दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे
1: जी।
0: हमने कहा ठीक है हम उनका एडमिट कर देते हैं। तो वह एडमिट कराया, फिर डॉक्टर ने बोला कि वो एक हफ्ते में डिस्चार्ज हो जाएंगे, बस सिर्फ खाना नहीं खा रही है। तो वो एक हफ्ते से वो 15 डेज हो गए वो खाना नहीं खा रही थी। फिर हमने भी मतलब हमारे जो कॉन्टेक्ट थे जिनके ऑपरेशन हुए थे, हमने उनसे बात की कि ये हमने लीवर ट्रांसप्लांट कराया है, वो खाना नहीं खा रही है, ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है। तो उन लोगों ने बोला कि कोई इंटरनल इन्फेक्शन होगा जो आपने शायद टेस्ट नहीं कराया। तो मैं गया था, मैंने डॉक्टर मेरे को डॉक्टर ने बोला कि इनका एक टेस्ट होना है CMV, बट उसको कोई कंफर्म नहीं करा कि इसको टेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना है, उसको पेंडिंग में रखा। फिर मैंने थोड़ा गूगल करा, मेरा खुद ट्रांसप्लांट हुए 1 मंथ नहीं हुआ था, मैं डेली हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था उस टाइम पे
1: जी,
0: मम्मी के जाके देखना, मेरे को बल्कि उल्टा बेड रेस्ट का समय था। फिर मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला कि CMV टेस्ट वैसे करवाना है तो आप करवा लीजिए। तो हमने 15 जून को टेस्ट कराया था और उसकी रिपोर्ट आई थी 22 जून को, जिसमें वो जो इन्फेक्शन था CMV वायरस होता वो इंडिकेट कर रहा था, जिसकी रीडिंग जो आई थी 15 तारीख को 4000, मतलब 7 डेज में उसकी रीडिंग बढ़ गई थी, 16000 के ऊपर पहुंच गई थी
1: जी।
0: तो हमने फिर 22 तारीख से उनकी दवाई देना स्टार्ट करवाई, कोई सी
2: दवाई इंदौर से मंगाई,
0: दवाई इंदौर से आती थी और फिर नहीं दवाई इंदौर से नहीं आती थी, दवाई देना स्टार्ट करी। तो उनके दवाई 27 तारीख को फिर टेस्ट कराया, तो फिर उनके मतलब जो CMV वायरस जो डिटेक्ट करा था वो डाउन होना स्टार्ट हुआ। तो जब डाउन होते होते वो 16000 से 12000 पहुंच गया, और उनका जो लीवर रिजेक्शन हो रहा था जो डोनेट हुआ था वो रिजेक्शन होता था, वो भी उनका पॉजिटिव वे में जा रहा था, वो भी उनका एक्सेप्ट होने स्टार्ट हो गया था क्योंकि वो वायरस की वजह से लीवर वो हो रहा था रिजेक्शन हो रहा था, क्योंकि उनको इम्यूनिटी ऑटो इम्यूनिटी डिजीज थी जिसके चक्कर में उनको लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। तो फिर जैसे तैसे हमें रिपोर्ट थोड़ी पॉजिटिव मिली तो हमें अच्छा लगा कि शायद ये रिकवर
1: कंट्रोल हो जाएगा।
0: फिर 3 तारीख को हमें पता चला सडनली उनको बीच में एक चीज और कराई थी, ट्रैको करके होते हैं जिसमें मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो गले में कट करके यहाँ से मतलब सांस,
1: ट्रैकोस्टोमी,
0: हाँ ट्रैकोस्टोमी वो करवाई थी। तो उसके चक्कर में उनका बोलना भी बंद हो गया था बड़ा।
1: ओके ओके, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से
0: मेरे हिसाब से अगर वो CMV टेस्ट अगर उनका टाइम पे हो जाता तो एक अंदर था कि वो शायद बच जाती, वो शायद लैक ऑफ मतलब मैं कहूँगा कि सिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि जहाँ पे सारी टेस्ट की रिपोर्ट फ्रिक्वेंट आ जाए, या टीम मतलब
2: टीम वर्क प्रॉपर
0: नहीं, क्योंकि जिन डॉक्टर ने हमें सलाह किया था ट्रांसप्लांट के लिए वो काफ़ी दिन शायद हॉलीडे पे थे उस टाइम पे।
1: ओके,
0: हम उनके कैबिन के बाहर भी जाते थे तो वो उस समय छुट्टी पे ही थे।
1: अभिषेक, यहाँ पर हम फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले अभिषेक की मदर की, तो चलिए हम फिर से अभिषेक से बात करते हैं और अपनी इस चर्चा को जारी रखते हैं। अभिषेक, ब्रेक में जाने से पहले आपने बताया कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, सो अब कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। तो आप कैसा फील करते हैं अभी, आपको कुछ कमी महसूस होती है? आपने लिवर डोनेट किया है तो, या कभी कुछ आपको परहेज करना पड़ता है, या कहीं से आपको ऐसा लगता है कि अब मैं उतना फिट नहीं हूँ जितना पहले था?
2: थोड़ा बहुत लगता है।
1: वो तो अभी आपका एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ इस वजह से, या फिर डॉक्टर्स ने बताया है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तो लीवर डोनेशन के बाद आपका लीवर 3 से 4 महीने में पूरा ग्रो हो जाता है और अल्टीमेटली आप एक तरह से पूरी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं।
2: मेरे को ऐसा तो ज़्यादा नहीं लगता, ट्रांसप्लांट हुआ मेरे को इतना वीकनेस नहीं लगती, बट हाँ जो मतलब पहले जैसा मैं था थोड़ा सा चेंज आया है, बाकी मैं फिट हूँ।
1: वो तो वो सिर्फ मन का चेंज भी हो सकता है, धीरे धीरे आप नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे तो वो चीज़ हट जाएगी, क्योंकि बहुत सारे केसेस देखे हैं कि
2: बाकी मुझे अंदर से ऐसा पछतावा मुझे ये रहता है कि अगर मैं अच्छी सिटी से करता, अच्छे हाई मतलब जगह से करता जहाँ की सर्विसेज अच्छी होती है, जहाँ के डॉक्टर्स मतलब पूरी टीम अच्छे होते, तो शायद
1: और अच्छा रिजल्ट मिलता।
2: मम्मी मेरे साथ होती आज, क्योंकि कुछ चीज़ों के वजह से मतलब रिपोर्ट प्रॉपरली नहीं आई हमारे पास, जिसके चक्कर में लेट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई।
1: ओके, सो अगर हम बात करें इस पूरे कॉन्सेप्ट की, जो अंगदान है, जैसा शुरू में आपने बताया कि आपने डिसीज डोनेशन के बारे में आपने बोला कि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, तो मैंने ही डिसाइड किया कि डॉक्टर ने जैसे लिविंग डोनेशन के बारे में बताया तो मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया कि मैं दूंगा डोनेट करने। हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंगदान को सपोर्ट नहीं करते, जिसके कारण से वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है, तो और जिसके कारण एक अच्छे भले हेल्दी इंसान को अपनी अंग दान करना पड़ता है। सो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मेरे हिसाब से तो हर घर में सबको, अगर आप फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको डोनेशन करना चाहिए,
1: प्लेज करना चाहिए, अंगदान का संकल्प करना चाहिए,
2: सबको देना चाहिए। मतलब ये गवर्नमेंट को ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि आप अपना बॉडी डोनेट करना चाहिए, आपको ज़रूरी है वो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बन जाएगी, किसी की लाइफ बच जाएगी, बहुत कुछ हो सकता है एक सिर्फ डोनेशन से। मैंने तो देखा आज के टाइम में लोग ब्लड देने तक से लोगों को मना करते हैं, बट करना चाहिए, ब्लड भी डोनेट करना चाहिए, बॉडी भी डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पे कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हमें पता चलता कि काश कोई कर दे, जब अपन जब दूसरे को करेंगे तभी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि जिनको ज़रूरत होती है उनको ही उसका महत्व पता होता है, जिनको ज़रूरत नहीं होती उनको उसका महत्व नहीं पता होता। सो बिल्कुल, तो दोस्तों ये थी अभिषेक की कहानी। अभी अभिषेक बिल्कुल रिकवरिंग पीरियड में है, ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हैं, बिल्कुल अपने नॉर्मल डेली रूटीन के काम पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं और धीरे धीरे और बाकी

0: की लाइफ भी रिस्टोर कर लेंगे, क्योंकि मदर अब नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव सा फील होता है, लेकिन होने को तो कोई टाल नहीं सकता, कोशिश तो पूरी करी थी हमने, अपना पूरा काम किया, बाकी भगवान को जो मंजूर रहता है वही होता है। बट एनीवे, अभिषेक को हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि उन्होंने क्विक डिसीजंस लिए और अपनी मदर की जान बचाने की कोशिश करी। एंड हम लोग हमेशा यही बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने अपने अंग दान कर दिए एंड उस सामने वाले की जान नहीं बची तो वो फेल हो गया। ऐसा फेल नहीं होता, अगर 1 भी मिनट वो एक्स्ट्रा लाइफ उसने जी है हमारे एक यस कहने से, तो बहुत बड़ा काम है, ऐसा काम जो भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और इसी चीज़ के साथ मैं भी आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जैसा अभिषेक ने भी कहा कि हर घर में हर इंसान को अपने अंग दान का संकल्प ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपके एक हाँ कहने से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। एक अंगदाता करीब 8 लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकता है, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ टिश्यू ऊतक डोनेशन के ज़रिए बेहतर बना सकता है। सो कोई बुराई नहीं है, जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हम जला दिया जाता है हमें, या फिर दफना दिया जाता है, वो काम अंगदान के बाद भी हो सकता है। अंगदान अगर हम कर दें तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जिंदगियां खुशियों से भर सकते हैं, एंड उसके बाद हम अपनी अंतिम क्रियाएं कर सकते हैं पूरी, कोई को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस फैमिली को, उस पेशेंट को ज़रूर फर्क पड़ेगा। सो
1: 8 लोगों के चेहरे पे एक
0: बिल्कुल,
1: उसका
0: इसी इसी विनती के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले एपिसोड में हम जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए शख्स के साथ, उसकी कहानी जानेंगे और कुछ नई बातें सीखेंगे। अभिषेक का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि अभिषेक ने इतना टाइम निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। सो अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सीय सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सीय उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: आपकी अपनी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा, मेरे एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ, याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते, उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो
7: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर, आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा, ये लिंक?
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों, खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: छह वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कहाँ से आते हैं?

दोस्तों 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं हूं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समा हो गया है पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनते हैं पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहने सोहने पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं थोड़ी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदा ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करते रहो पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपने रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो ते मैं थोड़ी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदा ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करते रहो पंजाबी गीत।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो।
7: हेलो सर। सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा
7: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा ये लिंक?
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
14: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: छह वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी।
3: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?

कानवी दशमलव 2 MHz पर ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेमेश शशि हाजिर हो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे ही स्वागत है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ी चुके होने न कने समय जड़ा है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक तो जरूर इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़िया। पहले तो तुह सारे ही इस प्यारे दे सफर च प्यारी दे गलबात च कने माटी दी महक कार्यक्रम दा जड़ा सफर है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक तुह कने बड़िया सारिया गल्ला भी करते हैं कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ते भी हैं तो जुड़ने वास्ते जड़ा हाँ दा नंबर है पहले नंबर तुह तक पहुँचाई दे न फिर जड़ा बाकी दियाँ गल्ला न से तुह तक पहुँचा दे न नंबर है 7081117091 तो नंबर तुह तक पहुँचाई ते तुह इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा कन्या कार्यक्रम दा आगाज़ कर देना इस प्यारे दे गीत कन्या।

0: कानू दशमलव तोमी का हर्ट्स पर ये तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तुहा सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने इसी कन्ने तुहा सारे सुनिया ये गीत ये शुरुआत अहां इस प्यारे दे गीत कन्ने कीती है कन्ने आज कने दिने दी अगर अहां गल करिए 2 जुलाई 2026 दी तो हर दिन अहां वास्ते खास हुंदा कने आज कना जेड़ा दिन ने से कयो खास है आज अहां जेड़ा खास दिन बना देन विश्व लेखन पत्रिका दिवस तो जरूर पत्रिका दिवस जेड़ा से आज अहां बना देन कने हर साल 2 जुलाई जो जड़े से अहां ये दिवस बनांदे न तो श्रोतों जिंदगी दी अहां गल करिए तो जिंदगी अहां जो क्या सिखांदी है हमेशा शांत रहना जड़े से अहां जो जिंदगी सिखांदी है अगर अहां शिकायत करदे न कने शिकायत करने दे बजाय अगर अहां खुद जो बदली लैंदे न तो कुथी ना कुथी अहां अपनी जिंदगी च सफलता जड़े से हासिल करी पांदे न क्योंकि पेड़ जड़ा से हमेशा पत्ते बदलता है जड़ जड़ा से सेम ही रहती है तो इसी प्रकार अगर अहां खुद जो बदल देन कने अपनी जिंदगी जो बेहतर बना देन तो बड़ी अच्छी गल है तो तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्ने जुड़ी सकते कने अहां कन्ने गल बात जड़ा से जरूर करी सकते तो श्रोताओं गलबात करने वास्ते जिहड़ा अहां दा नंबर है से तुहां तक पहुँचाई देना क्योंकि नंबर तुहां तक पहुँचाया होगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे नंबर तुहां जरूर जिहड़ा से नोट करा दे होने नंबर है 7018117091 कने ये नंबर तुहां तक पहुँचाई तो है कने पहले जिहड़ा श्रोता न से अहां कन्ने जुड़ चुके हैं कर दें तिना कन्ने गल बात हेलो नमस्ते जी
1: नमस्ते जी नमस्ते
0: जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है
1: जी
0: दया तो भगवान ने दी होना चाहिए दी ना जी
1: मौसम
0: साफ है ना जी जी जी ता तो है पानी होई या किनी होया अली उरा जो लगाई हड़िया
1: तो हां
0: जी यहां है ताली पानी नहीं है ना जी
1: बोले ला ने लाणम का ता आई न
0: जी जरूर जी जी ता और नोई ता जी
1: बस बढ़िया
0: जी ता आज तो हां
1: प्रोग्राम ही है यान का खबर देख रही
0: जी अच्छा प्रोग्राम जेड़ा ने उन कटवा दी होई हो ना जी
1: हां बस साफ की कटवा दे
0: जी जी जी तो आज तो हो कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी
1: सर तो अपनी मर्जी गाना सुना दे मन जवान से
0: जी अच्छा मेरी पसंद का गीत सुना अगर तू अपनी पसंद का गीत सुनना चाहंदे तो जरूर दसी दिया जी
1: हां
0: अगर तू हाँ अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो जरूर दसी दिया या मेरी पसंद ही सुनना है
1: हर बार ये अपनी पसंद है तो सुन दे
0: जी जी जरूर जी मेरी
1: पसंद गाना सुनना वा
0: जी जरूर जी तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी जुने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा
1: धन्यवाद
0: जी ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਓ ਇਸੀ ਗੂੰਜ ਕਰਨੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਲੈ ਕਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾ ਜੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तशो तो धैर्य जेड़े से अहां जो हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य अहां रखते न ताई अहां अपनी जिंदगी च सफलता जेड़े से हासिल करी पाते न। धैर्य रखने की जरूरत है, अगर अहां धैर्य रखी करी हर काम कर देन तो जरूर अहां सफलता जेड़े से हासिल कर देन। कई बार होंदा ना कि अगला व्यक्ति जेड़े से कुछ भी बोला था कने अहां खुद जो बदलने पर जेड़े से अपनी उम्मीदा जेड़ा ना टिकाई होंदियां, पर खुद जो नहीं बदलना, बदलना भी जरूरी है अगर तुहां सफलता दी ओर अगे बढ़ा देन ताई। कने अगर समय जेड़े से अपने हिसाब ने चल दे कने सब कुछ अहां जो सिखाइन दे, अगर अहां खुद अंदर धैर्य जेड़े से रख देन तो श्रोताओं इसी कने अगले जेड़ा श्रोता न पहले कर देन तिना कने गल बात। हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न जी? तुहां कुत्थों ते बोला दी कने तुहांदा नां की है जी?
1: मेरा नाम सुभाष है जी, मैं चमंडा ते बोला दा जी।
0: जी सुभाष जी, क्या काम काज लगया तुहां, क्या करा दे?
1: बस गा लगया है, गाइए बड़ना सा बड़े है कने जरा राम करा दे उन्हें
0: जी। अच्छा, आराम करा दे कने रेडियो गुंजन धर्मशाला भी सुना देना इसी कने
1: जी। गुंजन तो तुहां पता है, सुन दे रहन दे रोजी
0: जी। अच्छा, रोजी सुन दे रहन दे जी। ता सुभाष जी, एक विचार था कि धैर्य रखना कितना जरूरी है हां जो अपने जीवन च। हेलो
1: जी,
0: ता मैं गल बात करा दी कि अगर अहां धैर्य रख देन, क्योंकि धैर्य जिंदगी च बड़ा ज्यादा जरूरी है ना जी।
1: जी,
0: अगर कई बार होंदा ना कि अगर अगला व्यक्ति अहां कन्ने बुरा करा दा तो अहां ए सोच रखी करी चलदे न कि अहां भी अगले व्यक्ति कन्ने बुरा करने है ना जी, पर बदला लेने से पहले जी
1: बुरा नहीं करना चाहिदा जी।
0: जी,
1: कोई बुरा करता है तो समझाना चाहिदा कि अरे गलत करा रहा तू, ये बुरा ठीक नहीं है
0: जी,
1: अच्छा करो, अच्छे से फायदा ही है।
0: जी जी जी, सही है ना कि समय जेड़ा से सब कुछ सिखाइंदा है ना, समय जेड़ा से हर चीज दा सबक जेड़ा से हम जो देख री जानता है ना जी। अगर अहां अच्छा करगे तो अहां कन्ने अच्छा होना है, अगर अहां बुरा करगे तो अहां कन्ने बुरा होना है ना जी।
1: बिल्कुल
0: जी, कने अहां अपने कर्मा दा जेड़ा लेखा है से सिर्फ इत्थों ही है ना जी, कि अगर अच्छे कर्म करके ताहां अपनी जेड़ा किताब दा हर पन्ना साफ करी करी जानदे ना जी, क्योंकि जालू अहां स्कूल जानदे ना ता अगर अहां अच्छे ने पढ़ाई कर देन, अच्छे ने अपना होमवर्क कर देन ता कुथी ना कुथी अहां दे जेड़ा टीचर हन से अहां जो अच्छा बोल दे ना जी।
1: अंजी अंजी
0: जी,
1: बिल्कुल अच्छा करने पे फायदा ही है, अच्छे करने पे अपने नंबर ज्यादा ही बढ़ने
0: जी जी जी। ता सुभाष जी, आज तो हम कुंदिया गीत जिड़े से सुनना पसंद करगी?
1: मैं गीत सुनना गौआ उतरी पहाड़ा पे आई है कच्चा तू दूध पी ले रात के।
0: जी, गौआ उत्तर पहाड़ा ते आई है कच्चा दूध पी ले रात के ना जी। जी जरूर, ये गीत फरमाइश तुहां तक पहुंचान दी जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: बड़ा धन्यवाद महाराज
0: जी। तशु तो अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ान दे न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचान दे न। इंतजार जिड़े से तुहदा बिल्कुल खत्म कर देन तुहा सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ी सकते चाहे फेसबुक के माध्यम करने जुड़ा या रेडियो दे माध्यम ने जुड़ा पर जल्दी जल्दी जुड़िया क्योंकि इस कार्यक्रम दा जिड़ा सफर है से तुहां तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक। तो कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है तुहां इस कार्यक्रम च अपनिया जिड़ा फरमाइशां से जरूर करी सकते। तो इसी गलबात कन्ने अहां अग्गे बढ़दे न कन्ने अगली जिड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचांदे न। अगली फरमाइश अहां जो आई वे चैतड़ुए ते कन्ने तिना दा नां वे मंगल जी तिना तक अहां आएगी ते फरमाइश पहुँचा देन तुहां सारे भी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो इंजॉय करा।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते
1: जी स्वागत है जी तोहदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
0: बोला।
1: जी? यहाँ भी ठीक ठाक है जी। तोहा कुथु ते बोला दे, कने तोहदा ना क्या है जी? जी माया जी सुकड़े ते बोला दे जी। ता माया जी क्या हाल चाल है सुकड़े आलियां दे? क्या काम कार छेड़िया तो? हाँ
0: कपड़े
1: जी,
0: सारे
1: अच्छा
0: आए
1: जी। ता जिड़ा जिमीदार हैं तिना जो पानी हुई है कि नहीं होया? अली हुई है पानी?
0: जिम्मेदार ने
1: पानी जिड़े ऐसे हुई है उरे लगाने जो कि नहीं होया अली? जी ता माया जी तुंदी आवाज़ जिड़े से बड़ी कट्टी कट्टी के हो दी जी। जी ता माया जी आज तुह कुंदिया गीत सुनना पसंद करके।
0: भजन सुनाई
1: जी जरूर जी, तुंदा जिड़ा भजन है, तुंदी जिड़ा फरमाइश है, से जरूर तुह तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुंदा।
0: बड़ा
1: जी जी
0: धन्यवाद
1: जी अहाँ बोला दीन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते एक बारी फिरी ते तुह सारे दाई माटी दी मेह कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। बाकी जेड़ा श्रोता न सभी जरूर कॉल पर कॉल करा देन, तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी सकदे। अगले जेड़ा श्रोता है ना तिना कन्ने भी कर देना गल बात। हेलो,
0: हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा बड़ा बड़ा रेडियो गुंजन धर्मशाला जी। ठीक ठाक है ना
0: धन्यवाद
1: जी? ठीक ठाक है ना
0: जी। हाँ सुना
1: जी? अहाँ भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुह कुथु ते बोला थी कने तुहंदा ना
0: ये।
1: क्या है जी?
0: हाँ कपूर से बोला थे जी,
1: जी
0: वेद राम।
1: जी तपोवन ते बोला दे कने ना क्या दस्या जी तुहां?
0: हाँ
1: ना क्या दस्या जी तुहां?
0: जी, हेतु राम जी।
1: जी तो क्या काम कार तुहां छेड़िया जी? क्या करा दे तुहां?
0: अच्छा कम कार ब्याह लग गया जी, बक्का आंदा
1: जी अच्छा
0: दाम
1: ब्याह
0: लग गया।
1: दे जी ता आहां जो भी होना पोना है ब्याह दे पत्ते खाना जो ना जी
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आइया बस लंगर चालू है। हाँ जी
1: जी अच्छा लंगर चालू हुई है ना जी?
0: जी
1: जी चलो अच्छी गाल है
0: ना।
1: जी। जी ता रौनक आला माहौल बने हैं कि नहीं बने हैं?
0: हाँ जी,
1: रौनका लगी है कि नहीं लगी है ब्याह च?
0: हाँ जी हाँ जी जी
1: जी क्योंकि पुराने समय दिया अगर अहाँ गल्ला बातें ले करी हो ना हमेशा हाँ पुराने समय पर चली आते ना, क्योंकि पुराना समय ऐसा था कि रौनका जीड़ा ने उसे गायब नहीं होनिया थी ना जी
0: जी
1: जी तो हाँ जो तो हाँ भी लगता है कि हूँ जीड़ा कुथी ना कुथी है रौनका जीड़ा ने से थोड़ियाँ फीकियाँ
0: पांच
1: पेगियाँ
0: पांच छे छे दिन पहले रौनक चली रही है ना।
1: जी। कने 5-6 दिन क्या महीना 2 महीने पहले ही रौनका शुरू हो जानिया थी ना जी?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: जी सारे ही मिली जुले करी काम करते थे, कने एक दुए वो पूछते भी थे कि क्या काम रही या करने हो करना
0: हाँ जी
1: है,
0: हाँ जी हाँ जी, प्यार
1: पर उन्हें दी गल करिए ते
0: भावना थी ना, एक
1: जी
0: दूसरे
1: जी
0: ना प्यार भावना थी, तो इस करने से चल
1: जी
0: दे है।
1: जी पर उन्हें दी गल करिए तो कुछ ही ना कुछ ही उन्हें हर कोई अपना फायदा दिखा
0: नौवीं
1: था जी
0: जनरेशन से ऐसे अपने हिसाब से चल रहा
1: जी
0: है।
1: जी पर बुजुर्गों का जिड़ा कहना है ना सभी बड़ा ज्यादा जरूरी है ना जी,
0: हाँ
1: क्योंकि तिना दा आशीर्वाद होना भी जरूरी है। पर कई बार होंदा ना कि
0: जी
1: बच्चे भी कई बार अच्छी सोच रख देन या अपने घरे दे बारे च सोच देन, कने कुथी ना कुथी बच्चे भी गलत जड़ा हैं कुथी ना कुथी बजुर्ग जो भी अहाँ ये नहीं बोली सकते कि सभी अपनी जगह सही होंगे है भी कुथी ना कुथी गलत हो जाते ना जी क्योंकि

0: हर चीज दे दो पहलू होंगे ना जी। अगर बच्चे भी अगर अपनी फैमिली दे बारे च अच्छा सोचा देन, पॉजिटिव सोचा देन, तो कुछ ना कुछ बुजुर्गों जो भी बच्चों की सुनना चाहिए ना जी। जी क्योंकि हर चीज़ जड़े से बैलेंस ही जड़े से अच्छी लगती ना जी। जी
1: चलना
0: जी क्योंकि हर किसी की सोच अलग अलग होंगी ना जी। मेरी क्या सोच है से तुह जो पता नहीं है, तुह की क्या सोच है से मुझे पता नहीं है। पर मैं हमेशा
1: चाहिए।
0: यही बोलती कि अपनी फैमिली का जड़ा साथ है से हमेशा दिया। बच्चे भी अजकने दौर दी अहं गल करिए तो कुछ ना कुछ बच्चे भी पेरेंट्स दी बिल्कुल जड़े से नहीं सुना दे, तिना दा मान सम्मान जड़े से नहीं करा दे ना जी। क्योंकि तिना जो यही पता नहीं है कि यहाँ बड़े छोटे ने गल किस प्रकार करनी है ना जी। जी तो हर चीज़ जरूरी होंगी ना जी।
1: हाँ
0: जी तो आज तो हाँ कुंदिया गीत जड़े से सुनना पसंद करगी
1: जी सुनाई
0: जी। जिंदगी तो सोहनी है पर कुती ना कुती यहाँ जिंदगी दे जड़ा दिन है तिना जो कल पर छड़ी दे ना जी। अजकना
1: जिंदगी
0: दिन ना इंजॉय करी करी यहाँ सोचते ना कि कल कना जेड़ा दिन है उस जो दिख गए पर कल को नहीं दिखे है ना जी।
1: सोहनी
0: जी जी तो जरूर तुहदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचांदे जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी
1: बहुत
0: तुहदा
1: बड़ा भी धन्यवाद
0: जी। ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशो तो इसी सफर कन्ने हाँ अग्गे बढ़दे न कन्ने तुहां जो लेकर चलदी न अगली फरमाइश दी और सुनदे नि सा प्यारी दी आ फरमाइश आ जो ये फरमाइश हां जो आई हुए चमंडा ते कन्ने तीना दा ना वे सुभाष जी। सुभाष जी तक कहां ये गीत पहुंचा देना तुहां सारे भी इंजॉय करा।

0: श्रोताओं अगले जिहड़ा श्रोता ने सभी अहां कन्ने जुड़ चुके हैं कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी सर बढ़िया जी।
0: जी तुहां कुत्थे ते बोला दे कन्ने तुहांदा नाम की है जी?
1: धर्मशाला ते बोला दे कोतवाली बाजार ते।
0: जी धर्मशाला ते ही बोला दे जी। अपना नाम भी जरूर दसी दिया जी।
1: अतुल बोला दे जी।
0: जी अतुल जी क्या काम कार लगाया जी तुहां क्या करा दे आज?
1: हाँ रेस्टोरेंट जो काम कर दे
0: जी।
1: धर्मशाला
0: जी जी तो काम कार जी डेसे तो हंदा खरा चल लिया।
1: हाँ जी हाँ जी बढ़िया चल लिया। मैं कल एक दो दिन टाइम पे काम कर थोड़ा।
0: जी जी ता तो हाँ रेडियो गुंजन धर्मशाला जिड़े से रोजाना ही सुन दे।
1: हाँ जी हाँ जी रोज रेडियो दस गुंजन धर्मशाला लगाए होंगे। हाँ
0: जी ता अपना काम भी करते रहेंगे कने रेडियो ने भी मन लगाया होंगे ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी ता अतुल जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगे।
1: गीत सुनाई दे थोड़ा बिंदु नीलू दो बहना के बहना
0: जी बिंदु
1: दो सखी।
0: जी बिंदु नीलू दो सखियां।
1: हाँ जी
0: जी जरूर ये फरमाइश तो हाँ तक पहुंचा दें जी। चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा। जी अगले जेड़ा श्रोता ने तिना कन्ने भी कर देन गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तो हाँ दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना? जी तो हाँ कुछ ते बोला दे कने ना के जी तो हाँ दा
2: डाडे ते बोला।
0: जी डाडे ते बोला दे। जी पिंकी जी क्या काम कार लगाया तू हाँ कदे या मौसम है डाडे दा?
2: डाडे ना वो तो डाडी दे बार खाते।
0: जी अच्छा उरे लगाए बैठे तू हाँ के नहीं लगाया ली?
2: ना ना हाले।
0: जी तो हाँ नहीं लगान दे
2: ना।
0: जी
2: हाँ
0: जी ता पिंकी जी आज तो हाँ कुंदिया गीत अपनी पसंद च सुनना चाहेंगे। जी बाबा बालक नाथ जी दा कुंदिया गीत सुनने जी तो हाँ
2: चिमटे।
0: जी चिमटे दी छनकार।
2: जी
0: जरूर ये भजन तो हाँ तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा।
2: धन्यवाद
0: जी। तशु तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने गलबात अहां करा देना तो हाँ सारे जो पहले भी दस्या था एक बारी फिर ते दसी देना 2 जुलाई 2026 जो क्या खास दिन अहां बना देना विश्व लेखन पत्रकार दिवस जिड़े से आज अहां बना देना। इस दिन जो बनाने दा क्या मकसद है क्या जिड़ा भूमिका है से क्या उद्देश्य जिड़े से रहंदा है जिड़ा लेखन पत्रकार हैं तिना दे सामने जितनिया भी चुनौतियाँ आंदियां ने तिदे उपर जिड़े से ध्यान आकर्षित करना है। इसी कन्ने लेखन पत्रकारिता खेल जिड़े से दुनिया च बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करते है। ये जिड़े से केवल खेल दे बारे च ही जिड़ा जानकारी प्रदान नहीं करते है बल्कि जिड़ा खेल खिलाड़ियों ने या तिना दे काम मन तिना जो भी सराहना करते है। तशो तो आज हाँ एक खास दिन बना देने कने इसी खास दिवस कने या अपनी गलबात कने अगे बढ़ देने कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देने जिंदगी सोनी है

शाला ते कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कने तोहा सारे ये गीत इंजॉय कीता। ये फरमाइश इस गीत की फरमाइश अह जो आयु वे तपोवन ते कने तिना दा नावे सुफादू जी तिना तक अह ये गीत पहुँचाया कने तोहा।

सारिया भी इंजॉय किया। पिछतों गीत दे बोल थे जिंदगी सोनी है, तो जरूर जिंदगी जड़े से सोनी है, तस्वीर खिंचया करो जरूर यादा बनी रह जानिया। तो तस्वीर जड़ा न कदी कदी अहां वास्ते लेना भी जरूरी होनी है, क्योंकि जिंदगी का जिहड़ा लम्हा है ना से हर दिन अहां वास्ते खास है। अजकना जिहड़ा दिन है से अहां किस प्रकार इंजॉय करा दिन अपने कन्ने या अपने दोस्तों कन्ने या कोई भी रिश्ता जिहड़ा से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। कन्ने अजकना जिहड़ा दिन है से तुहां सारे ही इंजॉय करा दे होने न, कन्ने इस कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। समय जिहड़ा है सभी अपनी रफ्तार लेकर ही चलिया, तो समय के अनुसार अहां जो भी कार्यक्रम च चलना पौना, तुहां भी समय के अनुसार इस कार्यक्रम के सफर च अहां कन्ने जुड़िया, क्योंकि समय के अनुसार तुहां कार्यक्रम च जुड़ के ताई तुहां अपनिया जिहड़ा प्यारियां प्यारियां फरमाइशां से सुनी सकते। तो शुरू कर्म ही अहां दी पहचान है। अगर अहां कर्मा जो जिहड़ा अहां दे कर्म हन तिना जो पहचानी लैंदे न, ताई अहां अपनी जिंदगी च सफलता जिहड़े से जरूर हासिल करी पांदे न। सपने जिहड़ा न सह नहीं होंदे, अहां सोंदे समय जिहड़ा सपने दिखदे न से अहां दे सपने नहीं होंदे। सपने तो सह होंदे जालू अहां जो मेहनत करना पौंदी, मेहनत करी करी अहां अपने सपनियां जो जिहड़े से हासिल करदे। रास्ते जिहड़ा न से आसान जिहड़े से बिल्कुल नहीं होंदे, अहां बस दा ट्रैवल करदे न तो कुथी ना कुथी जिहड़ा बस चलांदा है ड्राइवर तिस जो भी पता है कि जिहड़ा ड्राइवर है तिस दे पिछे कितनी सवारी जिहड़े से बैठी होवे, बस ड्राइवर ही जिहड़े से इस गल्ला जो समझी सकदा कि पूरी सवारी जिहड़े से मेरे हाथ पर है, कि मैं किस प्रकार ड्राइविंग करदा है या किस प्रकार जिहड़ा रस्ता है उसका सफ़र तय करदा है। तो इसी प्रकार अहां दी मंजिल भी इसी प्रकार है कि अगर अहां अच्छे ने मेहनत कर देन या अच्छे ने ड्राइविंग करदा है ड्राइवर ताई से अहां जो अहां दी मंजिल तक पहुँचाइंदा है। तो शुरू मुश्किल जिंदगी का सफ़र है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है अगर अहां मेहनत कर देन तो ज़रूर अहां जीत जड़े से हासिल करी पाते न, तो ज़रूर इसी कन्ने अहां अगे बढ़ते न कन्ने तुहां जो लेकर चलते न अगली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश अहां जो आई हुए धर्मशाला ते कन्ने तिना दा नाम है अतुल जी। अतुल जी तक अहां ये फरमाइश पहुँचा देन, तुहां सारे भी इंजॉय करा

अशु तो समय की थोड़ी देर हाल कमी है तो समय के अनुसार अहाँ अगे बढ़ते हैं कने अगली फरमाइश तुह तक पहुँचाते हैं। सुनते हैं इस प्यारे दे भजन जो इस भजन की फरमाइश अहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का नाव है राधा कश्यप जी कने से रहने वाले ने कांगड़े।

श्रोताओं तुम सारे ही सुनिया एक गीत। इसी गीत कन्ने हाँ फिरी ते अगे बढ़ने कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से हाँ पहुँचानी है पिंकी जी तक कन्ने से रहने वाले न डाड़ते तिने तक पहुँचाते न ये प्यारा दया भजन प्यारी दे फरमाइश तुह सारे भी इंजॉय करा कन्ने। इसी गीत कन्ने हाँ तुह सारे जो ये गीत तुह तक छड़ा दे न कन्ने जरूर तुह सारे ते अनुमति भी लैनी है क्योंकि समय जेड़ा से होना हाँ जो बोला था कि कार्यक्रम ते अनुमति जेड़ा से तुह ले लिया तो तुह सारी अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
2: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
2: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
2: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा
6: सर, मैं पेमेंट की लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा ये लिंक?
6: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: बट ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: छह वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: अरे गेस भी
3: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?

शाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो।
7: हेलो सर। सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा, ये ले।
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: देखो, और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
0: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
0: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
0: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
0: तुम्हारे गेस भी
2: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?

नमस्कार जी, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला, तो ये सब ये ट्यून कर रहा है, यानी कि वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ये सब ये ट्यून कर रहा। और हूँ आरजे सचिन कपूर, हाजिर भू चुका कार्यक्रम अक नवा एपिसोड लेकर रे, अक नवा कार्यक्रम लेकर रे तुम सभी रहे रेडियो सेट माँ रेडी गुंजन धर्मशाला मंच। क्या हाल चाल ने श्रोतों तुंदे, उम्मीद कर दें तुंदे हाल चाल ठीक बुने, तो सब खरे बुने, तंदुरुस्त बुने और अपने घरे मस्त बुने हैं श्रोतों, है ना। और सभी दुख दर्द थों दूर बुने, बस इंसान की असो अके फरियाद करदा है, अके फरियाद सो करी बंदा कि आऊँ दुख दुख बीमारियों की असो दूर रही हूँ, है ना। बाकी तो चलो इंसान की ना कि खाई कमाई लेंदा है, लेकिन आगे की सो जहाँ दुख बीमारी थो दूर रहा तहने ऐसे भी जीवन में कि असो शांति बुंदी है, सिरे और सिरे परिवार रे जीवन में कि असो बिल्कुल शांति रहते हैं। और जहने कोई दुख बीमारी असूशो तो लगी पेंदे हैं या छुई लेंदे हैं तो पूरा परिवार भी डिस्टर्ब हुंदा है, और परिवार असो किसोगी जसियो लग रही सो भी डिस्टर्ब गया सब हुंदा। सो हम तो हमेशा ही फरियाद करनू ऊपर वाले थे, दुआ करनू ऊपर वाले थे कि दुख बीमारी मत लेंदे। बाकी तो चलो जो जिंदगी रे कर्तव्य हैं, जो जिंदगी रे फर्ज हैं, सो कहीं ना कहीं तो निभाई लेना है ना। सो तो इंसान की ना कहीं निभाई लेंदा है, लेकिन बस से है कि भाई दुख बीमारी इंसान की सो दूर रहे, भगवान दुख बीमारी तो की सो दूर रखा। और सचिन कपूर है जी कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव हिन, और इस लाइव कार्यक्रम में तो सब भी जुड़ी सकते हैं, के करी कॉल करी करी 708-8-8-709 पर नंबर आख मौके फिर आऊँ शेयर करना जनाब तू होगी 708-8-8-709 अक पर, तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल करी करी अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो वो के साझा कर सकते हैं। यह गल्ला रा खास ख्याल रहे जनाब की जानकारी किया सो रेडियो मंच 10 लाइक जरूर बहुत जानकारी किया, सो रेडियो मंच साझा करने लाइक किया सो ज़रूर वो, है ना। तो चलिए सभी पहले धर्मशाला का मौसम जो कि अक्सर है जानते हैं, तो असो पता है कि धर्मशाला का मौसम थोड़ा करे ठंडा किया सो जरूर बुआ बरसाला किया सो लगभग लगभग उतरे या तो थोड़ा करे ठंडा किया सो जरूर बुआ आशो तो इस समय रिया है गल करन ताज भी किया सो मौसम ठंडा रे हुआ मैक्सिमम टाइम किया सो आसमां में बादल के सो छू रही थी यशो तो, है ना। सो धूप किया सोना हिरने जो मुड़ी तीन धूप, हालांकि नमी री गल करूँ तो नमी भी किया सो ज़्यादा इस समय नमी लगभग 93% किया सो नमी दसू कर दे कि इतनी नमी किया सोहा। तो यह धर्मशाला रा अली तक रा जो मौसम असु तक जो साझा हुआ जो दसू हा शतों यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस रे आसपास किया सो इस समय मौसम बन रहा, और माफ़ करा नमी किया सो 93 ने नमी किया सो 78% नमी किया सो इस समय बन रही है। कुछ और मज़ेदार जानकारी और कुछ और मज़ेदार गल्ला लेकर तुसु अगो है जरूर हाजिर बोला जिन तक श्रोता सूगे कनेक्ट होंगे तो तुसु अगे जरूर है दसला कौन श्रोता कड़ी थो पहले कनेक्ट हुए न। बहरहाल जुड़े रहा बने रहा और जे सचिन कपूर सो के कार्यक्रम हो दे रहा हिंदी अपनी गप्पा, आगाज़ करते हैं छोतों कार्यक्रम रा इस गीता सोगे, और मेरे आगाज़ तो बाद कुछ अगली जानकारी तू होगी जरूर है साझा कर ले जनाब।

শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর বেড়ি গুঞ্জন ধর্মশালা তো এজ বি টিউন গুরু আর কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপা হাউ সচিন কাপুর লেকে হাজির হাতুন দে ভিডিও সেট মা বেড়ি গুঞ্জন ধর্মশালা মঞ্চ তা হক মোকে ফেরি বহুত বহুত স্বাগত হার্দিক অভিনন্দন সবি হুনে আলে রা সবি শ্রোতাগণ রা তা আইয়ে শ্রোতং কার্যক্রম যে আগো বেড়ন দে হিন আর ধর্মশালা নগর নিগম পর ভাজপা রা अकतरफा के ऐसो कब्जा श्रोत हूँ जी बिल्कुल नगर निगम चुनाव में विधायक सुधीर शर्मा री रणनीति की ऐसो व्यंग लेकर आया महापौर उप महापौर दोनों ही किया सो बीजेपी रे हिन और बीजेपी रा कब्जा है या धोना धोनी सीट पर श्रोत 2027 वास्ते की ऐसो बचाए मजबूत सीआईसी जाल जाल बोले सकते हैं जी बिल्कुल धर्मशाला रही है राजनीतिक घटनाक्रम महज आकर नगर निगम चुनाव तक सीमित नहीं है श्रोताओं बल्कि ऐसा 2027 वे विधानसभा चुनाव रे कखा कखा रोड मैप रे रूप में भी किया सो हेरू कर दें युवा नेतृत्व रे आगू बढ़ाना और समुदाय जो एसटी समुदाय जो मतलब एस टी समुदाय वाकि सो प्रतिनिधित्व देना और स्थानीय स्तर पर के सो पार्टी संगठन जो फुलादी बनाना ए भाजपा री उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा हाशतों जिठे सूत्रधार सुधीर शर्मा बन रहे हैं और चलिए अब किस प्रकार होगी क्या कुछ बुंदा सो तो 2027 में पता लगला लेकिन फिलहाल मेयर और फिलहाल मेयर री कुर्सी में किया सो शमशेर विराजमान हैं महापौर और उप महापौर री कुर्सी में किया सो बीजेपी रे दोनों खिलाड़ी के न सो विराजमान हैं श्रोतों चलिए तब विज़न भी थोड़ा कर इन क्लियर करो लेकिन विज़न क्लियर है भी ज़रूर इड़ी बैकी करी तुम दे हगूँ की सो विज़न क्लियर है शमशेर नह रही है जी किस प्रकार होगी गर्दन सो भी हेरना बहुत ही जल्द की सो है तीनों कॉल करना वाले न और बहुत ही जल्द की सो इस कार्यक्रम में गया सो तुस होगी रूबरू के सो करवाने वाले न बहरहाल कार्यक्रम जो हगू बढ़ेंदन सो तो इतों बाद अगली अन्य कुछ खास जानकारी के सो तू हो गया सो साझा करनी ने शेयर करनी ने लेकिन आइया फिलहाल लेखरी चलते है तू सभी जो इस गीत तारीख नारी श्रोतो बनी रहा जुड़ी रहा वेड़ी गुंजन रही सा गूंसो की श्रोतो और हुन दे रहा हुन दे रहा हिंदी अपनी गप्पा जो रेडी गुंजन धर्मशाला मंच गूंज अपने बन रही और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता असुओ असुओगी हाँ जुड़ रहे असुओगी बन रहे अरे

0: चलिए जी, दुख सुख सोगी निभाएं और उम्र रवाद आगे सब सोबी सोगी निभाएं, है ना। तय है दिता फिलहाल तो सब बन रहे ने समय वेड़ी गुंजन सोगे और हिंद श्रोतागण अशोगे कनेक्टेड है। FM बैंड 91.2 MHz पर है वेड़ी गुंजन, अभी गूंज होगी तो है बुनरन और इन द्रोतागण असुगे कनेक्टेड हैं। इसी प्रकार होगी जानकारी रहा सिलसिला चले रहना, इसी प्रकार होगी श्रोतों अगीत संगीत रहा इस सिलसिला के ऐसा चले रहना। हाँ हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी, नमस्कार।
0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी,
1: नमस्ते सर जी,
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
1: वो ठीक ठाक है ना सर जी?
0: बहुत बढ़िया जी, कौन बलुंदन और खड़ी तो बलुंदन
1: कोठिया जलोटते बोल रहे सर जी, सुनील कुमार जी।
0: अच्छा, है
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: जी,
0: ठीक ने जी, तो बल्ला तो ठीक ठाक।
1: हाँ जी सर जी, ठीक ठाक जी।
0: अच्छा जी, कौन दिन गीत होना जनाब तुसु?
1: पम्मी ठाकुर की आवाज़ है, एक हिमाचली भजन है, श्याम प्यारी बंसरी वाले।
0: अच्छा,
1: हाँ जी सर जी,
0: पम्मी ठाकुर री आवाज माहा श्याम प्यारे बंसुरी वाले।
1: हाँ जी, श्याम प्यारी बंसरी वाले।
0: चलो ठीक है जी, जरूर होने ले।
1: धन्यवाद जी, नमस्कार सर जी।
0: धन्यवाद जी। दर्शकों तो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही है और इस कार्यक्रम में तो सब श्रोता भी अक्सर जुड़ते हैं और जुड़ भी सकते हैं। 7088889 पर कॉल करी करी आई श्रोतों तो कार्यक्रम जो होगा बढ़ेंदे और कुछ इन दे अगले श्रोता असूगे कनेक्टेड हिन कनेक्ट कर देन और जी तक श्रोता कनेक्ट बंदे ते तक श्रोतों तू हो गए अगली जानकारी साझा कर लेते हैं। मानसून री एंट्री अले भोई थी, है ना जी। मानसून री एंट्री अले हिमाचल में भोई और एंट्री बंदे की है मानसून ने छिए मनो रे जान किया सुनी गले लिए जी। बिल्कुल श्रोताओं तो तुगरे जानकारी पहुंचाना चाहता कि हिमाचल में मानसून री एंट्री रे पहले ही दिन किया सो तेज़ बरखा वे चलते काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं क्या ने सो भूई ने और इसी बीच किया सो छिया मनु री मौत किया सो भी भोया श्रोताओं, जबकि 10 मनु क्या ने सो घायल हैं। मृतक में से दो जो मरी छुरे थी में से दो ही मनु री मौत सड़क दुर्घटना में भोई है, जबकि अक व्यक्ति री पहाड़ी थो फिसलने थो भोया और आखिरी अक व्यक्ति री किया सो करंट लगने थो किया सो भोया श्रोताओं। दो अन्य मनु भी किया सो अलग अलग हादसे माँ हादसे व शिकार के न सो बने हैं श्रोतों, है ना। प्रदेश व कांगड़ा जिला में त्राई मनु री किया सो मौत भोया श्रोताओं, जबकि मंडी जिला में अक व्यक्ति री किया सो मौत भोया। तटीय कांगड़ा और लाहौल स्पीति में रोड एक्सीडेंट के कारण किया सो दो मनु रे जान किया सो चली गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार अगर हम गल करूँ तो बुधवार संजा तक के सो प्रदेश में NH 35 सड़कें के थी सो बंद भी हो रही थी, जबकि 127 बिजली ट्रांसफार्म के सो ठप भी हो रही थी और कई क्षेत्र में के सो विद्युत आपूर्ति प्रभावित थी श्रोतों, है ना। और रिपोर्टर अनुसार अगर हम गल करूँ तो 18 सड़कें बंद थी कुल्लू ज़िला में, तेरे अलावा मंडी में 11 जबकि ऊना सिरमौर और लाहौल स्पीति में दो दो सड़क यातायात के थी सो बंद भी हो रही थी श्रोतों। तो मानसून री एंट्री भुंदे ही श्रोतों छिया मनु री मौत किया सो भुज गया और काफ़ी ज़्यादा असु सब भी वास्ते थोड़ा कर दर्दनाक जरूर है कि अले पहले दिन और पहले दिन है ये आंकड़ा छिया आंकड़ा के सो शुरू बुझे हुआ तब चलिए जी अले खुरे जो बूणा सो तो बूणा है लेकिन फिर भी अपना बचाव कर दे नदी नाले किनारे क्या है सो ना गंदा इन श्रोताओं और अपना बचाव किया सो जरूर करते हैं। इसी सो के श्रोतों इन श्रोतागण असो के कनेक्टेड हैं कनेक्ट कर दें ये आवाज़ तो तक भी पहुँच जाते हैं। नमस्ते जी।
2: नमस्कार महाराज जी।
0: जी महाराज नमस्ते नमस्ते, ठीक ठाक ना?
2: बस संभाल कदी मौज आ जी।
0: अच्छा क्या बात है, मालिक री मौज ता रोज बुना चिंदे हो, रोज बुना चिंदे बनु हो।
2: रोज का हर वक्त ही बुना चिंदे आ है।
0: हर वक्त ही बुना चिंदे आ।
2: के मालिक जो हर वक्त याद करिए ता दुख सुख कैन सब पता ना लगदा ते देरा।
0: ना लगदा जनाब ना लगदा।
2: हाँ जी, दूसरी गल ये है कि अजकल बरसात शुरू हो चुकी है।
0: जी जनाब।
2: बरसात शुरू होने हुए आ कि अपने घर में टार्च जरूरी होना चाहिए, क्योंकि अजकल जानवर ज्यादा लगे निकलना
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
2: है, तो
0: जी
2: मतलब समझा भी आएगा जरूर अपने अंगना उंगना द्वारा इतना जानवर क्या इतना चाहिए कि कोई चीज आई तना
0: इम्पोर्टेंट
2: कोई विश्वास न रहे अजकल। हाँ
0: ना रे हो।
2: जी, आज कंदायरा खाली उन्हें बेचारा के कांगड़े के
0: हाँ
2: किनारे
0: जी हाँ जी
2: दूध दी करी गोवे घरे पूछता है तो जानवर खाई लेसो।
0: धरती रे।
2: हाँ जी हाँ जी,
0: अच्छा
2: धरती से सर सर पे। हाँ
0: सर पे कीड़े खाए लो।
2: जी हाँ जी, हाँ तो ठीक है ना
0: अच्छा
2: भगत, ऐसे मन पीछे डाली डूरी बांध देता तो होगी ठीक बनी जाते
0: तद होगी भी कुछ गंदा ठीक।
2: मतलब ये तो हम अच्छा दुख सुख तो चल रहे
0: ये तो चलिए जी हिस्सा नहीं
2: जिंदगी
0: दे जिंदगी रे।
2: चलते। दूई गल जड़ी घटना बतवा दी ये भी दुख होंगे कि अजकल के संभली संभली कर चलना चाहता।
0: एग्जैक्टली सामने कर चलना चाहिए।
2: हाँ जी, समझ चोर आखी करना चाहिए इंसान तक कर दो पर दिमाग का ज्यादा दिमाग का जितू का ना परमात्मा कि जो भी चलना तो हेरी होनी कहीं चलना चाहिए।
0: वेरी राइट
2: दूसरी
0: जी
2: गल है कि अगर दुख तकलीफ चली भी इंदा तो घबराना मना चाहिए, जो परमात्मा के हथे होंगे सोई बंदा। हाँ
0: सब बंदा ये था। हाँ
2: जी
0: जी हाँ जी बिल्कुल सही बंदा।
2: हाँ जी, दूसरी गल है कि जनाब गीत सुनना दिया मेरिया लोटकड़िया गंगड़िया नाना जाना।
0: क्या बात है क्या बात है। लोटकी होगी थोड़ा तो सुना जी
2: जी महाराज,
0: जनाब जरूर सुन ले। तो है इतनी प्यारी प्यारी गल के सो अपने श्रोता तक पहुंचाई हिन, इतना प्यारे मैसेज अपने श्रोता तक पहुंचाई हिन, था गीता री फरमाइश की सो जरूर पूरी कर ले है।
2: ठीक है महाराज जी।
0: ठीक है महाराज जी, फिर अपने संदेश देने वास्ते और मैसेज देने वास्ते आऊँ सचिन कपूर तुंदा तहे दिल तो धन्यवाद करनुआ।
2: धन्यवाद महाराज।
0: धन्यवाद जी। तो श्रोतों इस प्रकार होगी इन श्रोत अगेन स्वस्थ होगी जुड़ते हैं जो फेसबुक के माध्यम तो इस समय में जो लाइव होने करते हैं तो दसना चाहता कि ए कुछ इन श्रोता हैं जो असोगी जुड़ते हैं और गलबात किया सो लंदे हैं और जो भी कोइंसिडेंस बछूरा बुआ सो जरूर दस दे है ना। तो ये कार्यक्रम में ऐसा जे रहती हुए कि पूरे दिन जो भी घटना होंगे सो इस कार्यक्रम ने माध्यम दो तो है पूरे अपने गद्दी कम्युनिटी तक किया सो पहुंचाए सकते हैं, पूरे मन तक किया सो पहुंचाए सकते हैं। पर आला हूँ सचिन कपूर और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही ने इस वक्त। तो ये जनाब कार्यक्रम आ गया सो थोड़ा करिए और आगू बढ़ देन अन्य जानकारी के अनुसार।

हो गया सो ज़रूर साझा करने हैं, शेयर करने हैं, लेकिन ते तगर ऐसो सब्जी भी तो आनंद लेना आशो तो आनंद लंदन कार्यक्रम रा इस गीत सोगी सोगी और तो सब जरूर जुड़े भी सकते जनाब जो नंबर में दस है। फिलहाल इंजॉय कर दिन इंदी अपनी गप्पा जो ईशान भारद्वाज से इस गीत सोगी बने रहा जुड़े रहा आज इस

चलिए ईशान भारद्वाज जी, फिलहाल तुस वह है अंदर जरूर बखा ले और कार्यक्रम जो हगो है जरूर बढ़ाना चाहते हैं इन श्रोताओं का, जो कि कार्यक्रम मंच इन दे बहुत सारे श्रोता के इनसो मैसेज रहे जरिए भी अस वो मैसेज करी चुक रहे हैं, जो कि अह ध्यान न दितुआ तस्करारी। लेकिन दुते धर्मशाला रह गया एक क्षेत्र में कि सो 8 घंटे बिजली बंद रहने, जरा गौर फरमाइएगा। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रे द्वारा किया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड रे द्वारा किया सो तो सो ये दसो हा कि दुते गया सो 8 घंटे बिजली बंद रहने, अब कड़ी कड़ी रहनी है जरा ध्यान दीन। भाई साहब कॉलेज रोड माँ बिजली के तस एरिया में केसो बिजली ना रहनी, सिविल लाइन में ना रहनी, हाउसिंग बोर्ड कलोनी में ना रहनी, लॉ डिपू बाजार में ना रहनी, चील घाड़ी शिक्षा बोर्ड जवाहर नगर और चेलियाँ गवर्नमेंट कॉलेज बीएड कॉलेज आस्को एचपीसीए स्टेडियम साई इंडोर स्टेडियम इन्या कॉलोनी में इन्या जगह के इन्या कॉम्प्लेक्स में गया सो तो दुते

8 घंटे की असो बिजली बंद रहनी आशा तो विभाग ये स्पष्ट करो हा कि यदि तत्ते मौसम खराब हुंदा ता ये शेड्यूल के असो अगले दिन वास्ते किया सो रखेगा ना हा तो बहरहाल शेड्यूल अगले दिन वास्ते किया सो रखेगा ना हा अगर दत्ते मौसम खराब हुंदा हा ता। तो चलिए जी इस बीच जो मैसेज रह जरिए सो फरमाइश छू रहा बाकी भी फरमाइश है चलो सो तो कॉल में छू रही और कॉल इन में सब भी होनी लेकिन ये फरमाइश सुनील राणा जी हरी आवाज़ में हाँ और अनाया और अव्यन जो कि स्लेट गोदाम रे नान के नहीं आ रहे लेकिन यारे जो मम्मी इन सो इन दे सीनियर थी काजल दीदी त्यारे बच्चन और काजल दी होगी वार्तालाप हुई थी लाइव तो पहले तो तीन दसो कि जो अव्याना सो काफ़ी ज़्यादा किया सो इस कार्यक्रम जो हुन दे हिन और ए ना कि आऊँ मतलब मेवे ते दीदी का इन द रिलेशनशिप भाई बहन ही रहा बड़े साल तो ता हुन देन ऐसा नहीं जो कि सो बच्चे और बच्चे तो पता कि सीरी ना मन देन लेकिन आओ माता पिता जो माता पिता हिन जी काजल दी ते त्यारे हस्बैंड उत्तम जी तीनों श्रेय देना चाहता है और कंग्रेचुलेशन करना चाहता कि इतनी घट एज में किया सो अपनी कल्चर जो है किया सो पसंद करू कर देन अपनी बोली जो है पसंद करू कर देन और बड़ी जाहिर सी गल है कि अगर सो इस कार्यक्रम जो पसंद करू कर देन तो इस कार्यक्रम रे जरिए कि सो बहुत सारी चीज़ा सो सीखो भी कर दे बुने है ना और रोजाना इन दे कार्यक्रम में किया सो कुछ ना कुछ आउटपुट निकली करके सो जरूर इन दे हा और अपनी खासकर बोली हो गया है अपने डायलैक्ट हो गया क्या सो है मौजूद रहते हैं जमीना तो जुट रहे रहते हैं तो स्टार्टिंग तेड़ियों ही बुंदे है ना फिर तो बच्चा जितना ग्रो करा उतना बेहतरीन बुंदा बेहतर बुंदा हा तो बहरहाल कार्यक्रम जो आगू बढ़ेंदे और इं धोनी बहनी तो भाई री फरमाइश में किया सो ये गीत होने लेंदे हैं सुनील राणा जी राय नवा गीत हा लेकिन तेरा लास्ट जो पैरा सो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता बहुत प्यारा म्यूजिक किया और मतलब दितुरा हाशो तो हो रहा हूँ हम बिल्कुल जयंती माता कैसे टाले ये हाशो तो गीत के सो रिलीज़ करू रहा और म्यूज़िक कंपनी कांगड़ा परिवार तो बड़ा प्यारा म्यूज़िक दितुरा हाशो तो बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा डायरेक्टर सुविंदर जी हिन और लिरिक्स तो ट्रेडिशनली हिन शो तो है ना लेकिन बाकी मैं बाखमाला तो चलिए जी गीत मुझे बहुत प्यारा लगता है और लास्ट खास कर ये वाला गीत वाला अंतरा किया सो जरूर हूँ दिन इं धोनी बहनी ते भाई जो बनी रे जुड़ी रे सुसोगी शो तो

वाकई मैं नशो तो इस गीता जो हुणी करे बहुत याद इंदी किसे री बुढ़ी माता री ता वाकई मैं जो मोरा प्यार बंदो हमेशा बोलनो अक्सर बोलनो बार बार बोलनो किसो बहुत लाजवाब आ तसियो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल सो वाकई मैं बहुत मुश्किल अक माँ जो अपने बच्चे वास्ते कर सकते शो तो मुझे ना लगता कोई और कर सकता वाकई मैं है तो चलो मोरे आंचल माँ पल रहे ना और मोरा दिल जिया सॉफ्ट बुंदा थी इन दबे दिल बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट दिल हा लेकिन हाँ सॉफ्ट दिल ज़रूर है लेकिन जिंद ग्रह है ठीक न खरे न जैन खरे न बुन जैन दिल ठीक न बोता हार्ट दिल बच गंदा लेकिन फिलहाल गल मोर ही चल रही तो वाकई में मोरा प्यार और मुझे ये लगता ना मुझे अक्सर हूँ यह गल्ला जो लाइव रे दौरान बलदा भी आ कि आहे बलदेन कि इंदे माँ बुढ़े आस वो गिरे कर देन अलके हो गिरे कर देन या मोटे हो गिरे कर देन या मंजाड़ी हो गिरे कर देन तो ये बड़ी मुझे मतलब अटपटी दे गल लग दे यार इंदी क्या औकात है कि आहे माँ बुढ़े रखना है ना मुझे ना लगता कि सिरे भी इतनी औकात आ कि सो अपने माँ बुढ़े रखना ना भाई साहब त्यारा मतलब तो है कोई भी व्यक्ति आ जाए सो आऊँ आ जाए सो कोई भी हा माँ बुढ़े रहा कर्ज सो कदी ना चुकाई सकदा जो माँ बुढ़े आसू वास्ते करूरा बंदा जो ज्यारे फादर साहब ने बुंदे ताहे मोए जो संघर्ष करूरा बंदा ताहे मोए जो अपना अक अक तिनका जोड़ी करी किया सो अपने बच्चे जो किया आंसो पढ़ूरा लिखूरा बंदा हा अक अक पह जोड़ी करी किए सेरी ख्वाहिशा पूरी करूरी बुंदी ने सो मुझे ना लगता कोई और कर ही सकता हा शो तो हाँ मेरे दिल न जाने को भरी इंदा लेकिन मोरे बराबरी मुझे लगता कि पहले अगर मुझे ये बलन कि भगवान पूजना की माँ पूजनी ताऊँ निको मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी मुझे ये बल दे वो ना लगना कि पहले अपनी माँ पूजनी हाँ जी बिल्कुल कजो कि सो भगवान हर जगह अवेलेबल ना बुझ सकता है तेर तकर मोर रिश्ता ऐसा बनू रहा असु सब भी वास्ते लेकिन आऊँ बेहद शर्मिंदा बंदा है गल्ला थों कदी कदी कि जो बच्चा बल दे इनकी इंदी माँ असु सो गिरन दिया इंदी इंदा बूढ़ा की असु सो गिरन दिया ना जी भाई साहब कन्नो हाथ लाए ना लाइव भी चल रहा है इस समय कि अह तिया हो गिरन दे ये शब्द की असो इस्तेमाल करो कर अलके तो मोटेरी दड़ी गाल कोई नहीं कजो कि जो त्यारा संघर्ष है ना जो त्यारा समय आ जो तुसु दितुरा तिया जो त्यारी पीड़ा सो थोड़ी ना है कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति को ना सो बाकी चाहे जितना मर्जी मोटा पद बो जितना मर्जी जड़ी मर्जी बो जो मर्जी बो लेकिन माँ बुढ़े अगो किया सो कोई कुछ नहीं आ नथिंग नथिंग नथिंग हो बार बार बोलता कुछ नहीं आ और मो अगो तो हा ही कुछ ना कजो कि मोरा प्यार जिनी समझ लो सो बड़ा खुश नसीब है जिनी मोरा प्यार समझो और जिनिया ना समझो जिनी वही लगता कि इंदे माँ बुढ़े ठुच ठुच पाऊ कर दे इंदे माँ बुढ़े के न सो ही अपनी लंदे हिन आजकल री जनरेशन किया सो चेंज हा आजकल री जनरेशन में किया सो बड़ा चीज़ा बदली गई ना आगू बढ़ना सो चलो ठीक आ सो अक रोड आ अक मैप रोड आ सो अक तरफ ठीक आ तो है बड़ा जनरेशन सोगी भी तस हिसाब होगी भी जमाने होगी भी ढलना किया सो जरूरी है लेकिन तिया मत सिखा जिन्या अक अक बूंद के आसो तुंदे ना कर रे अपने जीवन रे तिन्या जो मत सिखा कि किं करी जनरेशन चेंज और किं करी क्या कुछ चेंज आ सो तिन्या सिखाने और तिन्या पढ़ाने भी जरूरत नहीं है। बहरहाल कार्यक्रम मंच तो सब बन रहे ना वीडियो गुंजन धर्मशाला सोगी और जिं करी एक मौके फिर आऊँ तू दसना चाहता फेसबुक रे माध्यम थों भी की दत्ते की असो भाई साहब 8 घंटे धर्मशाला रे कई क्षेत्र में कि असो 8 घंटे बिजली बंद रहने हाँ ता कड़ी कड़ी रहने हाँ डीपू बाजार में असो तो कॉलेज रोड में हाउसिंग बोर्ड में कलोनी जितनी भी इन इस एरिया री तड़ी सब भी जगह चील घाड़ी में शिक्षा बोर्ड में जवाहर नगर और चेलिया गवर्नमेंट कॉलेज बीएड कॉलेज को एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला
साई इंडोर स्टेडियम इन सभी जगह की असु दत्ते बिजली की सो बंद रहने हाँ एन दे फेसबुक रे माध्यम तो जो असु की श्रोता जुड़ रहे बंदे तिया तक ये जानकारी है पहुँचाई हाँ तैया कार्यक्रम जो फिलहाल थोड़ा करी आगू और बढ़न दे हिन और अबे फरमाइश शरा दौर हाँ दसो भी पूरा कर लेंदे इन शो तो इन दे अगले श्याम प्यारे बांसुरी वाले है ना गीतारी आप फरमाइश थी आइए जी कर लेंदे पूरे।

0: शत एफ एम बैंड इक्यानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉ एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही चलिया इंदे अगले श्रोता सुगे कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: ओ ठीक ठाक है ना?
0: बहुत बढ़िया जी। तो है भला तो है ठीक ना? हाँ
1: हाँ जी ठीक सर। ठीक जी।
0: कौन बोलूँ देन और कड़ी थो बोलूँ देन जनाब
1: हाँ सर करतार बोल देना पिल्लू था।
0: जी। करदार जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: करतार जी तो आज अगर फरमाइश पूरी ना बोले तो नाराज तो ना बोले।
1: ना जी ना ना ना मेरा सदन दवा कदम करता रहा तो बल्लू बंदा फरमाइश
0: क्या फरमाइश है? सज सजना री क्या फरमाइश है? सज्जन ना रुकना चाहिए
1: कोई गल दुख रखना जी है
0: फरमाइश तो बल्ला क्या फरमाइश है?
1: एक काम ना रही है रहा है अपना बात सुना जरा।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: चलिए
1: ठीक
0: दुई बोल जो असो सज्जन जो है होना ही दिन तेन है ना।
1: है सर। ठीक है सर बड़ी मेहरबानी सर
0: धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद।
0: चलिए चलिए श्रोताओं
1: धन्यवाद
0: फिलहाल कार्यक्रम जो बढ़ंदन है और हरदेव जी री फरमाइश थी। हरदेव जी री फरमाइश है फरमाइश जो गर्दन पूरे बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने पन रहे।

शत एफ एम बैंड इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ट्यून को ड्रॉ रहा हूँ सचिन कपूर ले लेनो तो सुथो इजाजत शोतो गंदे गंदे अक सजना री फरमाइश इन दोता रा कोई सजना तो सजन ना रोसना चाहिए दोस्त किया सोना रोसना चाहिए शोतो और दोस्त इतना जिंदगी रहा असली सुकून असली मजा ही ना मजा लेना बहुत दोस्त ले चलेगा अच्छा फिलहाल आऊँ सचिन कपूर लेनो तो सुतो इजाजत हंसते रहे मुस्कुरा रहे और रेडी गुंजन रे सभी श्रोता जो नमस्ते और रेडी गुंजन में सभी जो ये होते रहे मिलते हैं श्रोतो आफ्टर फ्यू आवर्स।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। 8 पारंपरिक उत्पादों को मिली GI टैग, मल्टीटास्क वर्कर नीति को शीघ्र अंतिम रूप देगी सरकार। बीएड की डिग्री पूरी करने के लिए मिला स्पेशल चांस, 20,000 रूपए प्रति सेमेस्टर होगी फीस। बीबीजे रामजी में बड़ी दिहाड़ी, अब हिमाचल में आपदा कार्य भी शामिल। सीएम बोले, जनहित प्राथमिकता ईमानदारी से निभाएं जिम्मेदारी। वाणिज्यिक सिलेंडर 183 रूपए सस्ता, नायरा ने पेट्रोल व डीजल के दाम घटाए। अब इसी के साथ आइए समाचार सुनते हैं विस्तार से।

विद्युत उप विभाग नंबर 1 के सहायक अभियंता अभिषेक कटोच ने जानकारी देते हुए बताया है कि 3 जुलाई सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सिविल लाइन कॉलेज रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, लोअर डिपू बाजार, चिलगाड़ी, शिक्षा बोर्ड जवाहर नगर, एआईआर चेलियां, गवर्नमेंट कॉलेज, बीएड कॉलेज और स्को एचपीसीए स्टेडियम, साई इंदौर स्टेडियम, एआईआर कॉलोनी, एसएसवी कॉम्प्लेक्स, जेल रोड में आरएमयू इंस्टॉलेशन के चलते विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर शटडाउन अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। हिमाचल प्रदेश से पहली बार ताजी चेरी और पलम की निर्यात खेप सफलतापूर्वक ओमान पहुंच गई है। ये प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे हिमाचल के फलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी और बागवानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। हाल ही में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 400 किलोग्राम ताजी चेरी तथा 400 किलोग्राम ताजे पल्म की पहली खेप को रवाना किया। ओमान पहुंचने पर मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने प्रचार अभियान को शुरू किया तथा फलों को ओमान के विभिन्न खुदरा स्टोर में आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया। यहां लोगों ने हिमाचल प्रदेश के फलों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और स्वाद की सराहना की और उपभोक्ताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। विद्युत उप विभाग नंबर 2 के सहायक अभियंता रमन भरमोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 केवी दाढ़ी फीडर के शीला चौक, अचीवर हब, दाढ़ी बाजार, गबली दाढ़ी, पासू, भटेड़ व अन्य साथ लगते क्षेत्रों में 4 जुलाई सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर शटडाउन अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कृषि महत्व वाले 8 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतिक GI पंजीकरण मिल गया है। इन उत्पादों में स्पीति का सी वर्कॉन, सलूनी सफेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोटिया, किन्नौरी टोपी, मंडी की सेपू बड़ी, किन्नौरी सेब और किन्नौरी आभूषण शामिल हैं। इन 8 नए उत्पादों के साथ अब हिमाचल प्रदेश के कुल 17 पारंपरिक उत्पादों को हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के माध्यम से GI पंजीकरण मिल चुका है। राज्य सरकार विभिन्न विभागों में ग्रुप डी पदों पर मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्ति को शीघ्र अंतिम रूप देगी। इसको लेकर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में मल्टीटास्क वर्करों की पात्रता, चयन प्रक्रिया, नियुक्ति व्यवस्था, सेवा शर्तों, कार्यक्षेत्र तथा विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विस्तृत मंथन हुआ। प्रदेश में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती लंबे समय से लंबित है और हजारों युवा नई नीति का इंतजार कर रहे हैं। नई नीति लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित होगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU ने वर्ष 2017-18 के बीएड के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने का ये अवसर प्रदान किया है। उक्त अवधि के जिन विद्यार्थियों की डिग्री पूरी नहीं हुई है, वे 20,000 रुपए प्रति सेमेस्टर फीस प्रदान कर आवेदन कर सकते हैं। इवन सेमेस्टरों की परीक्षाएं जुलाई माह में आयोजित होंगी, जबकि ऑड सेमेस्टरों की परीक्षाएं नवंबर या दिसंबर माह में आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राज्य ब्यूरो, जागरण हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से महात्मा गांधी मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार की नई BBJ रामजी योजना लागू हो गई है। योजना के तहत ग्रामीण कामगारों की दिहाड़ी बढ़ाई गई है। सामान्य क्षेत्रों में मजदूरी 247 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए और जनजातीय क्षेत्रों में 309 रुपए से बढ़ाकर 375 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है, जिसे हिमाचल प्रदेश में भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में बुधवार को वर्ष 2026 बैच के HAS एवं संबद्ध सेवाओं के 27 प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। ये अधिकारी डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में फाउंडेशन कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से लोगों की समस्याओं और शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान करने तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ
प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाने को कहा। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बाद वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपए व विमान ईंधन में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। 19 किलोग्राम वाला वाणिज्यिक सिलेंडर दिल्ली में अब 2,930 रुपए का मिलेगा। वहीं निजी तेल कंपनी नायर एनर्जी ने पेट्रोल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपए की कमी की है। ये 2 साल से भी अधिक समय में उसकी पहली कटौती है। 5 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 13 रुपए घटाकर 808 रुपए कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय SOS के माध्यम से अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब HP ओपन स्कूल के तहत पंजीकृत विद्यार्थियों को भी नियमित विद्यार्थियों की तरह हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों एवं प्रैक्टिकल पुस्तिकाओं से भी पढ़ाई करनी होगी। जल शक्ति विभाग अपनी संपत्तियों को लेकर संपत्ति रजिस्टर तैयार करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निर्देशों पर विभाग ने ये कवायद प्रदेश भर में आरंभ कर दी है। विभाग के इस कदम से मशीनरी, भवन, जमीन, उपकरण समेत अन्य परिसंपत्तियों की जानकारी रहेगी। वहीं इससे विभाग की करोड़ों रुपए की संपत्तियों का अवैध कब्जा तो एक्शन संपत्ति रजिस्टर तैयार करने के साथ साथ विभाग अपनी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड भी तैयार करेगा। जमाबंदी और अन्य कानूनी दस्तावेजों के आधार पर प्रत्येक भूमि की स्थिति स्पष्ट की जाएगी। यदि कहीं विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन भवनों का निर्माण ऐसी भूमि पर हुआ है जो विभाग के नाम दर्ज नहीं है, ऐसे मामलों में भी विभाग कदम उठाते हुए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई को अंजाम देगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कानूनी विवाद ना हो। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने घर में खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। खुश रहना, तंदुरुस्त रहना जो है वो मैं अक्सर कहता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है श्रोताओं, खासकर मानसिक तनाव से दूर रहना बहुत ज़रूरी है ना। इंसान सब कुछ कर सकता है लेकिन जो मानसिक तनाव उसको मिलता है ना, उससे वो जूझ नहीं पाता है श्रोताओं, उससे वो हार जाता है और ज़रूर हारता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, खुश रहिए जनाब, खुश रहिए। खुश रहने की वजह कुछ भी हो सकती है, खुश रहने की वजह कुछ भी हो सकती है, तो आप उन्हें ही देख कर जो है वो खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहरहाल मैं सचिन कपूर हूँ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को होस्ट करूँगा और इस कार्यक्रम में श्रोता हूँ। जैसे कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको गानों के साथ तो रूबरू करवाते ही हैं, साथ ही साथ श्रोताओं गीत संगीत के साथ भी रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी बाखूबी जानते हैं कि हम आपको धर्मशाला का मौसम जो है वो बताएंगे कि इस समय धर्मशाला का मौसम क्या बतला रहा है। तो अच्छा, गैस कीजिए कि क्या होगा, क्योंकि पूरा दिन जो है वो धूप नहीं थी श्रोतों, है ना। हालांकि अभी थोड़ी सी धूप बिल्कुल खिली है, तो थोड़ा सा अनुमान लगाइए आप भी। हम तो रोज़ाना लगाते हैं अनुमान, अभी आप लगाइए अनुमान। तो मैं बताना चाहता हूँ श्रोतों, इस समय जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास धर्मशाला का मौसम बना हुआ है। ह्यूमिडिटी की बात करूँ, जिसे नमी कहते हैं, वो 65% जो है वो बनी हुई है धर्मशाला में। तो यह धर्मशाला का इस समय का अपडेट मौसम, ताज़ा मौसम का हाल। फिलहाल तो हम करेंगे आगाज़ कार्यक्रम के इस गीत के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूँ ही।

श्रोताओं, आपको भी ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि प्यार हो रहा है ना जी, ज़रूर लगता है ऐसा, बाखूबी लगता है, हमेशा लगता है, बार बार लगता है, हर पल लगता है। FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना RJ वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का, हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। बहुत प्यारा सा गीत हमने सुना, कार्यक्रम का आगाज़ हमने कर दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हो रहा है। देखिए, प्यार में ही जो है वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, बेहतरीन लगती हैं, और फूलों की तरह खिलती हुई लगती है श्रोतों। क्योंकि अगर आप चिंता करते हैं और चिंता से दूर रहना चाहते हैं तो प्यार करना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ प्यार बहुत ज़रूरी है श्रोतों, है ना जी। और चिंता जो है वो वाकई में इंसान को जो है ना, वो वाकई में ही हताश कर देती है, निराश कर देती है, उसे तोड़ देती है, उसे टूटने पर मजबूर कर देती है ये चिंता, ये परेशानियाँ श्रोतों कुछ इसी प्रकार की हैं। क्या करिए, अगर सुकून के पल चाहिए तो सुकून आपको छीनना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी से। सुकून के पल जो है वो यूँ नहीं मिल जाते, वो छीनना पड़ता है श्रोतों, वो बिल्कुल छीनना पड़ता है ना जी। और आप देखिए, सोच की चिंता बनाने की बजाय है उसे सही दिशा में काम, एक्शन में बदलाव। यानी कि ठीक है, आप कई चिंता होती है जो बेवजह भी हो जाती हैं, हमें कई चिंता होती है जो काम को लेकर होती है, तो उस चिंता को, काम को लेकर जो है वो आपके एक्शन में जो है वो दिखना चाहिए। और कई चिंताएं होती हैं जैसे मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स एक ऐसी चिंता है जहां इंसान जो है वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है, वो कुछ ना कह सकता है, ना फैमिली के बिना रह सकता है, है ना। तो कुछ चिंताएं इस प्रकार की भी होती हैं और कुछ चिंताएं काम को लेकर भी होती हैं। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी सुन रहे हैं इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला, RJ सचिन कपूर के साथ आपके अपने रेडियो सेट पर, रेडियो गुंजन धर्मशाला पर, और फेसबुक के माध्यम से बिल्कुल जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं श्रोतों। बिजली विभाग की ओर से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से जो जानकारी हमारे तक पहुंची है, हम अपने श्रोताओं तक ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं। 3 जुलाई यानी कि कल जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कहाँ कहाँ लाइट नहीं रहेगी, वो बिल्कुल आपको वो प्लेसेस बताते हैं। सिविल लाइन, कॉलेज रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, लोअर डिपू बाज़ार, चील गाड़ी, शिक्षा बोर्ड, जवाहर नगर, AIR चेलियाँ, AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, वहाँ पर भी लाइट नहीं रहेगी। चेलियाँ गाँव में भी लाइट नहीं रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज में भी लाइट नहीं रहेगी, BEd कॉलेज में भी, और स्को में भी, HPCA स्टेडियम में भी, साई इंदौर स्टेडियम में भी, AIR कॉलोनी में भी जो है वो लाइट नहीं रहेगी, SSB कॉम्प्लेक्स पर भी लाइट नहीं रहेगी, JL रोड में भी जो है वो लाइट, इन जगहों पर, इन एरियों पर जो है श्रोताओं वो लाइट नहीं रहेगी। अगर कल मौसम ख़राब होता है तो इसे अगले दिन के लिए जो है फिर वो यही सेम जो लाइन से वो अगले दिन के लिए कॉपी कट पेस्ट हो जाएंगी, इनके अगले दिन भी इसी तरह से फिर चलेगा अगर कल मौसम ख़राब होता है तो। और बिजली विभाग ने जो है वो लोगों से सहयोग की अपील की है जी, बिल्कुल। तो इसी तरह से खास जानकारियों के साथ आपको हम रूबरू करवाते रहेंगे श्रोताओं, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा RJ सचिन कपूर के साथ, गूंज अपनेपन की और गूंज प्यारे प्यारे श्रोताओं की जो हमारे साथ बने हुए हैं। लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर।

शतम एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय चला हुआ है गुड इवनिंग धर्मशाला। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। बहुत प्यारा संगीत आप सभी ने सुना, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक दिल रुबा है। चलिए फिलहाल धर्मशाला का दिल अब किस पे फिदा होगा, यानी कि धर्मशाला के लोगों का दिल जो है वो 2027 में किस पर फिदा होगा, ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे 2027 के। लेकिन फिलहाल जो है वो धर्मशाला नगर निगम चुनावों में भाजपा ने एक तरफा जीत जो है वो दर्ज करते हुए कांग्रेस को पूरी तरह से जो है वो एक तरफ धकेल दिया है। श्रोतों, विधायक सुधीर शर्मा ने विधायक सुधीर शर्मा की चाणक्य नीति और उनके धर्मशाला मॉडल की बदौलत महापौर और उपमहापौर दोनों पदों पर भाजपा ने जो है वो कब्जा जमा लिया है श्रोताओं, और कब्जा कर लिया है। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं मात मिली है श्रोताओं, और अब नगर निगम में स्पष्ट बहुमत हासिल कर सुधीर शर्मा ने अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ और संगठनात्मक क्षमता का लोहा जो है वो मनवाया है श्रोताओं। जी बिल्कुल, और इस शानदार जीत के जरिए भाजपा ने न केवल स्थानीय निकाय पर अपना कब्जा जमाया है बल्कि एसटी समुदाय से महापौर चुनकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत सियासी विवासत जो है वो भी बिछा दी है श्रोताओं। सुधीर शर्मा की चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा युवा और नए चेहरों पर उनका भरोसा रहा है। इनकी राजनीति का ये बहुत एक्सपीरियंस है, हम सभी बखूबी जानते हैं, लेकिन इस बार इनकी जो रणनीति है कभी ना कभी फेल भी हो जाती है, लेकिन इस बार सुधीर शर्मा की रणनीति जो है वो सबसे बड़ा इनका हथियार जो है वो रहा है, और हथियार रहा है युवाओं नए चेहरों पर उनका भरोसा जताना। पार्टी के भीतर कुछ पुराने कार्यकर्ताओं की नाराज़गी और असंतोष ज़रूर देखने को मिला, लेकिन शर्मा अपने फैसले पर अड़िग रहे श्रोताओं। चुनाव परिणामों ने उनके इस विस्क को जो है वो बल्ले बल्ले करा दी। 17 वार्ड वाली धर्मशाला नगर निगम में भाजपा 11 उम्मीदवारों के साथ भाजपा ने शानदार जीत जो है श्रोताओं वो दर्ज की, जबकि एक निर्दलीय पार्षद ने भी अपना समर्थन भाजपा को दे दिया। चलिए आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, आपके अपने आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर के साथ लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, गीत संगीत का

FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो चौकी सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है पुनः आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में जो है वो मस्त होंगे श्रोताओं। लेकिन मानसून की एंट्री होते ही, अभी मानसून ने एंट्री की है हिमाचल में और आते ही मानसून ने जो है वो 6 लोगों की जान जो है वो ले भी ली है। जी बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है ना कि बरसात का इंतज़ार तो ज़रूर होता है, लेकिन अब जो हिमाचल में बरसात पड़ रही है ये कहीं ना कहीं लोगों की जान, बहुत जाने जो है वो लोगों की जा रही है। जी बिल्कुल श्रोताओं, पूरी जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। मानसून की एंट्री के साथ हिमाचल में 6 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में मानसून की एंट्री के पहले ही दिन जो है वो तेज़ बारिश के चलते हुई दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई है श्रोताओं, जबकि 10 लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। मृतकों में से जो है वो 2 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है, जबकि एक व्यक्ति की पहाड़ी से फिसलने से हुई है, पैर फिसलने से हुई है श्रोताओं, और एक की करंट लगने से जो है वो जान गई है। 2 अन्य लोगों की भी अलग अलग हादसों में मौत हुई है। प्रदेश के कांगड़ा ज़िला में 3 लोगों की मौत हुई है श्रोताओं, जबकि मंडी ज़िला में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं कांगड़ा और लाहौल स्पीति में जो है वो रोड एक्सीडेंट के कारण 2 लोगों की जान चली गई है श्रोताओं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार अगर मैं बात करूं तो शाम तक प्रदेश में 1 NH-35 सड़कें जो हैं वो इस समय बंद पड़े हुए हैं, जबकि 127 बिजली ट्रांसफार्म भी ठप होने से कई क्षेत्रों में जो है वो विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है श्रोताओं, यानी कि लाइट नहीं है। 127 बिजली ट्रांसफार्म बंद होना मतलब कई क्षेत्रों में जो है वो लाइट नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट है जो हमने आप तक शेयर की है, साझा की है श्रोताओं, और कहीं ना कहीं ये वाकई में ही दिल को दहलाने वाली बात है और कहीं ना कहीं वाकई में ही ये दिल को हताश और निराश करने वाली बात है कि अभी मानसून की एंट्री होते ही मानसून जो है वो 6 लोगों को निकल गया है, 6 लोग जो है वो मौत के घाट उतर गए हैं। वाकई में ही तड़पने वाली बात है श्रोताओं। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं समय FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला चल रहा है। आरजे सचिन कपूर को यहीं सुनते रहिए, मिलते हैं कुछ एक खास जानकारियों के बाद इस गीत के बाद।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोतो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने सुना, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, ये गीत आप सभी ने सुना। श्रोतो वाजा हिंदुस्तानी मूवी से लिया गया ये गीत था श्रोतो, और अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आपने सुना है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अन्य जानकारियों के साथ हमारे श्रोता जो हैं वो बने हुए हैं अन्य जानकारियों को सुनने के लिए। तो लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अन्य जानकारियों की ओर। पहली बारिश में जो है श्रोताओं वो बह गया जी बहुत कुछ, नगरोटा सूर्य फिलहाल तो बहा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मौसम की पहली ही मूसलाधार बारिश ने जो है वो नगरोटा सूर्य क्षेत्र में विकास कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारी बारिश के चलते गज खड में जल स्तर बढ़ने से पुल निर्माण के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए अस्थाई टेम्परेरी पुल तेज़ बहाव में बह गया श्रोताओं। इससे निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं नगरोटा सूर्य ज्वाली मार्ग पर बसा चौक संपर्क सड़क की स्थिति भी पहली ही बारिश में जो है वो ख़राब हो गई श्रोताओं। सड़क जो है वो चौड़ीकरण कार्य के दौरान बिछाई गई और जो सड़क थी वो पहली ही बारिश में जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त श्रोतों होगी। स्थानीय लोगों ने ये भी आशंका जताई कि अस्थायी पुल बह जाने के बाद गाज खड़ पर जो है वो निर्माणधीन पुल का कार्य भी प्रभावित हो सकता है। उनका कहना है कि निर्माण कंपनी धीरे धीरे अपना सामान समेटती दिखाई दे रही है। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियां यूं ही चलते रहेंगी श्रोताओं। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, क्योंकि शाम भी खूब है और साथ

शोधों कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम में आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर, रेडियो गुंजन धर्मशाला में। तो आइए जी, कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोतों, हिमाचल प्रदेश से पहली ताजी ये जानकारी बिल्कुल आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आज ज़िला कांगड़ा की जानकारी आप तक पहुंचाए। श्रोताओं, ज़िला कांगड़ा में संचालित होने वाली स्कूली बसों में होने वाली ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने और स्कूली बसों से संबंधित अन्य सुरक्षा मानकों पर बरती जा रही ढील की सूचनाओं पर ज़िला बाल कल्याण समिति कांगड़ा ने कड़ा संज्ञान लिया है। विभिन्न माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ज़िला बाल कल्याण समिति ने स्कूली बसों के संचालन के मानकों को पूरी तरह से लागू करवाने को लेकर क्षेत्र परिवहन अधिकारी धर्मशाला और देहरा को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से समिति ने दोनों क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों से स्कूली बसों में ओवरलोडिंग की समस्या और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने को कहा है। ये जानकारी ज़िला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विक्रमजीत शर्मा ने दी। विक्रमजीत शर्मा ने बताया कि ज़िला बाल कल्याण समिति बच्चों के संरक्षण एवं कानूनी अधिकारों की पालना को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है। विभिन्न सूचना तंत्रों के माध्यम से ज़िला भर में बच्चों के सबसे पहले बच्चों के हित से जुड़े मामलों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर जो है वो तीव्रता कार्यवाही की जा रही है। श्रोताओं, उन्होंने कहा कि ज़िलावासी बच्चों के उत्पीड़न या अधिकारों के हनन से जुड़े मामलों में कार्यालय फ़ोन नंबर पर 0189222184 या फिर ईमेल आईडी kangra@cwc.gmail.com पर सूचना दे सकते हैं या सहायता मांग सकते हैं। नंबर एक बार फिर से पुनः मैं दोहराता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ, 0189222184 पर। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, पिटारा जनाब यूं ही खुलता रहेगा। लेकिन चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। श्रोताओं, और धड़कन मूवी से लिया गया यह गीत है। नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, सुन रहे हैं। वेडी गुंजन की गूंज के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए।

0: क्लिक ऑन द बेल।
1: श्रोतो एफएम 91.3 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और अब वक्त हुआ है वेडी गुंजन धर्मशाला में श्रोतो समाचारों का। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वेडी गुंजन की इसी गूंज के साथ।
2: नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो आप सभी ने ट्यून किया है वेरी गुंजन धर्मशाला और एक कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा, यूं ही बढ़ता रहेगा, जिस तरह से आप सुन रहे हैं जानकारियाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं जानकारियाँ, बिल्कुल देख रहे हैं आप फेसबुक के माध्यम से और सुन रहे हैं बिल्कुल कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को लेकर चलते हैं कुछ एक और जानकारियों की ओर। बिल्कुल आप सभी को लग रहा होगा कि अभी जानकारियां फिर से जानकारियां, तो यूं ही चलेगा श्रोताओं जानकारियों का सिलसिला और इसके बाद हम आप तक ज़रूर गीत संगीत का सिलसिला जो है वो भी ज़रूर पहुँचाएँगे श्रोताओं। फिलहाल ज़िला चंबा के सलोनी बहचौरा उपमंडल में बरसात की बेरहम बारिश ने तबाही जो है वो मचा कर रख दी है श्रोताओं। बारिश के कारण सलोनी उपमंडल की पंचायत सलोनी की एक पंचायत में जो है वो बाढ़ के कारण दो मकान जो है वो गिर गए हैं श्रोताओं। इनमें एक प्रभावित परिवार को अपना आशियाना छोड़कर दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। सलोनी की सूरी पंचायत के तितराड़ गांव में जो है वो बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इससे अचानक आई तेज पानी और मलबे के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इससे पूरा गांव को खतरा पैदा हो गया है श्रोताओं। ग्रामीण में भय का माहौल जो है वो डर का माहौल जो है वो पैदा हो गया है और ये तो वाकई में ही देखिए अभी बरसात मात्र शुरू हुई है। मानसून की पहली बारिश ने जो है वो हिमाचल को मैं कहता हूँ धो कर रख दिया है श्रोताना जी। और चंबा में बाढ़ ने मचाई तबाही, सलोनी में दो मकान जो हैं वो गिरे श्रोताओं। बारिश है से ऊना भी कहीं ना कहीं ऊना और बाजार स्कूल में जो है वो पानी घुसा श्रोताओं ऊना के ही। तो ये बरसात ने आगाज़ कर दिया है, ये बरसात ने चेतावनी दे दी है कि मैं इस समय जो है वो एंटर हो चुकी हूँ और आप सभी जो है वो तैयार रहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि पूरी तैयारियाँ कीजिए, भरपूर तैयार रहिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और कार्यक्रम में लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से बहुत प्यारा सा गीत है श्रोताओं। तो चलो ये मूवी आप सभी ने ज़रूर सुनी भी होगी, देखी भी होगी, बॉर्डर मूवी से लिया गया ये गीत है। रूप कुमार राठौर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत, जाते हुए लम्हो ज़रा ठहरो ज़रा ठहरो, लेकिन लम्हे कभी ठहरते नहीं हैं श्रोताओं, वो सिर्फ गुजरते जाते हैं।

हाँ श्रोतो, लेकिन अभी आप लोगों का वक्त नहीं हुआ है जाने का, अभी हमारा वक्त नहीं हुआ है कार्यक्रम को छोड़कर जाने का। बहुत ही प्यारी सी ये मूवी थी श्रोताओं, बॉर्डर मूवी। ये सब ये सारी मूवी देखकर ना वाकई में रोना तो ज़रूर आ जाता है हम सभी को, है ना। लेकिन क्या करें श्रोताओं, और इस खासकर इस गीत को, इस गीत की जो पिक्चराइजेशन है उसे देखकर वाकई में ही रोना आता है। लेकिन ये ड्यूटी ऐसी है श्रोताओं, और मुझे लगता है हर ड्यूटी वैसी ही होनी चाहिए। आप अपने काम में जो है वो इसी प्रकार से इसी प्रकार से आप प्रोफेशनल होने चाहिए, तभी काम करने का मज़ा जो है वो आता है श्रोताओं, है ना। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी सुन रहे हैं इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ, और लेकर चलते हैं आप सभी को अन्य जानकारी की। और अन्य जानकारियों में से इस खास जानकारी को सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे श्रोताओं। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने सूचित किया है कि सिस इंडिया लिमिटेड हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर के केवल पुरुषों के 150 पद भरे जाने प्रस्तावित है। जी बिल्कुल, इन पदों हेतु जो योग्यता रखी गई है, एजुकेशन की जो योग्यता रखी गई है श्रोताओं, 10वीं व उससे ऊपर की रखी गई है, 10वीं 12वीं की, है ना जी। आयु जो है, उम्र जो है वो 19 से 40 वर्ष तक रखी गई है। इन पदों हेतु कंपनी नियमित रूप से जो है वो आवेदकों का चयन करेगी और उन्हें 17,500 से 23,000 रुपये प्रति माह वेतन व अन्य सुविधाएं कंपनी के नियमानुसार दिए जाएगी। बिल्कुल, जो कंपनी के नियमानुसार अन्य सुविधाएं होंगी वो भी उन्हें मिलेंगी। 17,500 से लेके 23,000 तक रुपया मिलेगा जी हर महीने। उन्होंने बताया कि सभी आवेदक जो है वो इंटरव्यू के लिए अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हिमाचली प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं अपना बायोडाटा की कॉपी व अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो साथ तो लेकर आए। 6 जुलाई को उपरोजगार कार्यालय ज्वालाजी में, 7 जुलाई को उपरोजगार कार्यालय नगरोटा बगवा में, 8 जुलाई को उपरोजगार कार्यालय नूरपुर में, 9 जुलाई को उपरोजगार कार्यालय फतेहपुर में तथा 10 जुलाई को जिला रोजगार कार्यालय पालमपुर में प्रातः 11 बजे पहुंचकर बिल्कुल कंपनी के समक्ष इंटरव्यू हेतु उपस्थित हो सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं श्रोताओं। उन्होंने कहा कि इस इंटरव्यू हेतु आवेदकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य भत्ता जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, और विभागीय डिपार्टमेंट साइट पर जो है वो अब इंटरव्यू का ब्यौरा अपलोड कर दिया गया है, जो जो हमने बताया ये भी और अन्य जानकारी जो है वो भी। तो चलिए जी, जितने भी बेरोजगार हमारे युवा हैं उनके लिए कम से कम कुछ तो मिला। इनकी ये लगता है हमें कि शायद 17,000 से घर नहीं चलता या शायद 23,000 से घर नहीं चलता, लेकिन ऐसा नहीं है। चलाने वाले आज की डेट में भी जो है वो 10-12,000 में घर चला रहे हैं, और घर में मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी बात 3 टाइम का खाना होना चाहिए, छत होनी चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मानसिक शांति होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि घर में वो प्यार होना चाहिए, वो कला क्लेश नहीं होनी चाहिए, वो प्यार होना चाहिए, वो एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए, फिर घर 10 में भी चल जाएगा, 15 में भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी मानसिक शांति नहीं है, अगर आपके जीवन में सुकून ही नहीं है, तो मुझे लगता है लाखों अरबों खरबों उनकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं है श्रोताओं। सो मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, शांति बहुत ज़रूरी है श्रोताओं। बहरहाल आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। बिल्कुल लाइव ये कार्यक्रम चला है, जानकारियां आप तक हम बिल्कुल पहुंचा रहे हैं, अन्य जानकारियां जो है वो भी हम आप तक यूं ही पहुँचाएँगे श्रोताओं। आप सभी बने रहिए, जुड़े रहिएगा वेणी गुंजन की सी गूंज के साथ।

तो श्रोताओं, आप सभी को भी ये तो दस्तूर है ना ज़िंदगी का, ये तो दस्तूर है ज़िंदगी का, इसमें आप कोई भी श्रोता हमारे मुकर नहीं सकते हैं। किसी को वो लड़का बहुत याद आता होगा, किसी को वो लड़की बहुत याद आती होगी, वो कॉलेज का समय, वो कॉलेज के दिन। एक बार याद कीजिए ना आंखें बंद करके, उस उन सुनहरे पलों को जो है वो एक बार फील कीजिए ना श्रोताओं। आज कर लेते हैं, आज कर ही लेते हैं उन सुनहरे पलों को फील। वाकई में ही वो लड़का और वो लड़की बहुत याद आते हैं। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, बेहतरीन आवाज़ में मैं कहूँगा, ये प्यारा सा गीत हमने सुना श्रोतों, है ना। और वो कॉलेज के दिन भी कुछ प्यारे दिन थे, बहुत प्यारे दिन थे। शब्द कम पड़ जाते हैं मुझे तो वाकई में ही, है ना। उन दिनों में वो मस्ती होती थी, उन दिनों में वो पढ़ाई को लेकर लगाव भी होता था, दोस्तों को लेकर रुचि भी होती थी, और वो महफिल में जो है वो जाना भी होता था। कॉलेज समय में जब कहीं भी, क्योंकि मैं खुद धर्मशाला कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो कभी भी प्रयास में जब भी फंक्शन होता था तो उस फंक्शन में जो है वो जाना ज़रूर होता था, है ना। तो वो कॉलेज के जो लम्हे हैं, वो कॉलेज के जो दिन हैं, वो हर किसी को याद आते हैं, हर किसी को याद आते हैं। वो वाकई में ही वो दिन, वो लम्हे दोबारा वापस अब कभी भी नहीं आ सकते। इस बात का बहुत दुख लगता है कि ज़िंदगी जो है वो एक बार जब चलने लगती है ना, तो पीछे मुड़ कर नहीं देखती है, वो सिर्फ़ आगे की ओर बढ़ती जाती है और बढ़ती ही जाती है, पीछे मुड़ कर कभी भी नहीं देखती है। ना वो दोस्त वापस आते हैं, ना वो लम्हे वापस आते हैं, ना वो दिन वापस आते हैं, ना वो मस्ती वापस आती है, ना वो उम्र वापस आती है। सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाती है कि आगे की ओर बढ़ना है, पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखना है। पीछे सिर्फ और सिर्फ यादें रहती हैं श्रोताओं। तभी तो कहते हैं ना कि तस्वीरें भी खींचना ज़रूरी हो जाती हैं ज़िंदगी ज़िंदगी में, क्योंकि बीता हुआ लम्हा जो है, बीता हुआ पल जो है, गुज़रा हुआ पल जो है, वो वापस नहीं आता है। तस्वीरें ही तो उन गुज़रे हुए लम्हों को याद दिलाती है। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए जी, लेके चलते हैं आप सभी को इससे प्यारे से

क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये गीत जितनी बार सुना जाए ना उतनी बार दिल दहल सा जाता है। दिल वाकई में ही शब्द कम पड़ जाते हैं। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना नाचीज सचिन कपूर। हमने गीत संगीत का पिटारा भी खुलता देख लिया, हमने जानकारियों का बहुत सारा पिटारा भी खुलते देख लिया। श्रोताओं, अब वक्त हो गया है वेडी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद मिलते हैं आप सभी से।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर

0: प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
1: हाँ ना, समझ गया।
0: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरे एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो
7: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा
7: सर, मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा ये लिंक?
7: यस सर।
6: ओके।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: विटामिन्स और मिनरल्स से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? ये लोग कहाँ से आते हैं?

0: दीवाने। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला चला हुआ है। श्रोतो मैं हूँ सचिन कपूर। तो 7:45 हो चुके हैं श्रोतो और अब वक्त हो गया है वेरी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: जी ओमान, मुख्यमंत्री ने कहा इससे किसानों के लिए खुलेंगे समृद्धि के नए द्वार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा प्रदेश में जल्द लाई जाएगी नई औद्योगिक नीति, पर्यावरण अनुकूल व अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को दी जाएगी प्राथमिकता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अनुसार CBSE स्कूलों में मेरिट आधार पर होगी अध्यापकों की नियुक्ति। नगर निगम सोलन में महापौर पद पर भाजपा की जीत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा सुक्खू सरकार की साजिशें हुई नाकाम। और बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने नाहन में किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को विस्तार प्रदान करने और राज्य के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी के तहत हिमाचल से पहली बार चेरी और प्लम की खेप ओमान पहुंची है। वहां के लोगों ने हिमाचल के फलों की उत्कृष्ट गुणवत्ता व स्वाद की सराहना की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खुलेगी। उन्होंने बागवानों से गुणवत्ता ग्रेडिंग और वैज्ञानिक खेती की तकनीकों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया ताकि हिमाचल वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले फलों के आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सके। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी जिसमें पर्यावरण अनुकूल और अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। आज नाहन में आयोजित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस नीति में स्थानीय युवाओं को अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर जोर रहेगा।
2: हमने अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें कि हम ज्यादा प्रमोट, हम जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूनिट्स हैं उनको हम प्रमोट करेंगे। जो वाटर कंज्यूमिंग यूनिट्स हैं जैसे एथेनॉल का बहुत चलन है उसको हम डिस्करेज करेंगे। पावर कंज्यूमिंग यूनिट्स है, सरिये वाले यूनिट्स है, उसको हम प्राथमिकता नहीं देंगे। ऐसी यूनिट्स को हम प्राथमिकता देंगे जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। और हमारी कोशिश है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, वहां पर हमारी इंडस्ट्री जाए ताकि हमारे जो फ्रूट बेस्ड है, फूड बेस्ड है, हमारे कोल्ड स्टोरेज चेन है, इनको हम बढ़ावा दे रहे। तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी जल्द आने वाली।
1: उद्योग मंत्री ने बताया कि RDS योजना के तहत सिरमौर जिले में 157 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि बिजली सेवाओं को मजबूत किया जा सके। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि CBSE स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों की पदोन्नति नीति भी मेरिट के आधार पर लाई जाएगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में सूची लगभग 90% तैयार हो चुकी है और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में CBSE अध्यापकों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने पर सहमति बनी है और अब मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूलों के विलय का कार्य शैक्षणिक सत्र के बीच में नहीं किया जाएगा।
3: मेरिट के आधार पर जो हमने एक पॉलिसी लाई थी और उसके आधार पर आपकी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो। उदाहरण के तौर पे हमारे जो प्रिंसिपल्स के भी लगभग कोई 150 के आसपास हमने जो पद भरने हैं उसकी तो सूची भी तैयार ऑलमोस्ट हो चुकी है और उसके उपरांत अन्य कैटेगरीज के जिन्होंने रिटर्न दिया था उसके बाद स्क्रीनिंग हुई, उसके आधार पर ये सारी बातें हो तो जो कल की बैठक थी उसके बारे में सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ेगी इसको हम कैबिनेट भी ले जाएंगे। और जहाँ तक हमारे शिक्षा विभाग की
1: सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आज सोलन में आयोजित जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को भी कहा। सुरेश कश्यप ने सभी खंड विकास अधिकारियों को मनरेगा के शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
4: सोलन जिला की दिशा की बैठक थी और इसमें हमने भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं उसका रिव्यू किया और की समीक्षा करके हमने निर्देश भी दिए हैं कि समयबद्ध तरीके से जो इन योजनाओं को पूरा किया जाए। हमने पीएमजीएसवाई की जो हमारे सड़कें जिनका निर्माण का काम चल रहा है और हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ लगभग 52% रोड्स ऐसे हैं जो पीएमजीएसवाई के तहत बने हैं।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नगर निगम सोलन के महापौर और उप महापौर के चुनाव आज संपन्न हुए। इसमें भाजपा की 4 बार की पार्षद सुषमा शर्मा महापौर जबकि निर्दलीय चुनाव लड़े गौरव राजपूत उप महापौर निर्वाचित किए गए। दोनों जनप्रतिनिधियों ने सभी 17 वार्डों में एक समान विकास करवाने की प्राथमिकता दोहराई। उन्होंने लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भरोसा भी दिलाया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निगम सोलन में भाजपा की महापौर सुषमा शर्मा और गौरव राजपूत को उप महापौर निर्वाचित होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की ये जीत लोकतंत्र, जनविश्वास और सुशासन की राजनीति की जीत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये परिणाम स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों से निराश है और जनप्रतिनिधियों के विवेक के सामने सुखू सरकार की साजिशें नाकाम।

0: साबित हुई हैं। लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल में पहाड़ी से पत्थर गिरने की दर्दनाक घटना में एचआरटीसी के परिचालक ज्ञान सिंह की मौत हो गई। ज्ञान सिंह मंडी जिला के जोगेंद्र नगर क्षेत्र के लड़बड़ोड़ गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार बस अपने निर्धारित रूट पर थी और आज सुबह म्याड़ नाला के पास बस रुकने पर ज्ञान सिंह ब्रश करने के लिए नीचे उतरे थे। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर उनके सिर पर आ गिरा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि प्रदेश में दो दिनों के भीतर पत्थर गिरने से मौत की ये दूसरी घटना है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने आज नाहन में महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। समिति के राज्य अध्यक्ष संतोष कपूर ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर प्रदेश व केंद्र सरकार को घेरा और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने प्रदेश सरकार से महंगाई पर नियंत्रण करने और रोजगार के अवसर बढ़ाकर आम जनता को राहत देने की मांग की है। संतोष कपूर ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
1: विरोध प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान के अंदर जो है हमारा देश की जो सरकार है उसके प्रति आक्रोश है। देश और प्रदेश की सरकार को भी साथ में कि ये जो देश के अंदर प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, जो हालात आज बने हुए हैं उन हालातों को ऊपर अभी भी कंट्रोल कीजिए, अन्यथा जो है देश के अंदर आक्रोश और महिलाओं का रोष जो है बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में हम ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर रसोई गैस की कीमत पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं की गई तो ये आक्रोश जो बढ़े।
0: प्रदेश कांग्रेस ने आज से राज्य में संगठन विस्तार अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान अगले एक महीने में 8 से 10 हजार लोगों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के पहले दिन आज शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में रामपुर से 2 बार भाजपा प्रत्याशी रहे ब्रिजलाल ने 250 से अधिक सदस्यों के साथ कांग्रेस का दामन थामा। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
2: कार्यक्रम की आज हमने शुरुआत की है। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी हमारे साथ है और रामपुर से हमने इसका शुरुआत किया है और आज ब्रिजलाल जी रामपुर से संबंध रखते हैं और ये अपने कम से कम 250 से 300 कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ है और सभी लोगों ने यहाँ पार्टी को ज्वाइन किया। इसी प्रकार के प्रोग्राम जो है हम पूरे प्रदेश भर में चलाएंगे और पूरे प्रदेश में लगभग हम 8 से 10 हजार लोगों को जोड़ेंगे।
0: दूसरी ओर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होने का दावा पूरी तरह झूठा और जनता को गुमराह करने का प्रयास है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जन विरोधी नीतियों और विफलताओं से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का राजनीतिक नाटक कर रही है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल से पहली बार चेरी और प्लम की खेप पहुंची ओमान। मुख्यमंत्री ने कहा इससे किसानों के लिए खुलेंगे समृद्धि के नए द्वार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा प्रदेश में जल्द लाई जाएगी नई औद्योगिक नीति, पर्यावरण अनुकूल व अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को दी जाएगी प्राथमिकता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अनुसार सीबीएसई स्कूलों में मेरिट आधार पर होगी अध्यापकों की नियुक्ति। नगर निगम सोलन में महापौर पद पर भाजपा की जीत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा सुक्खू सरकार की साजिशें हुई नाकाम। और बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने नाहन में किया प्रदर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और अब वक्त हो गया है श्रोतो आप सभी से अलविदा लेने का, आप सभी को टाटा बाय बाय बोलने का। जाते जाते यही कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रेडी गुंजन में सचिन कपूर को यहीं सुनते रहिए और सुनाते भी रहिए। नमस्ते।